ये आकाशवाणी है FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20। श्रोताओं, सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक नशे को कहे ना जिंदगी को हाँ। वाचक एवं प्रस्तुति सहायक मोहम्मद शरीफ छिपा और प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल। सुबह 10:00 आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत और गाने नए तरह नए फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30। श्रोताओं, युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00 और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:00 और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा शाम 7:30 पर। श्रोताओं, रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम एशियन गेम्स 2026 की एक झलक। रात्रि 8:30 पर समय रहेगा गाने नए जमाने के फिल्म संगीत। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी। विकसित भारत जनसेवा

0: अभियान के तहत प्रदेश में पहले दिन आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5921 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। मॉनसून की विदाई से पहले प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं झमाझम बरसात का दौर। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना आज जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 सितंबर को होगी, जबकि 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना मतदान समाप्त होते ही की जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को होगा। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत प्रदेश में आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5,850 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और 5,921 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि शिविरों में आमजन, खासतौर पर युवाओं और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी है। जयपुर और अलवर में जिला कलेक्टरों ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य ब्लड सेंटरों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान नागरिकों को ब्लड ग्रुप जांच और स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि एम्स संस्थानों को चिकित्सा अनुसंधान, उत्कृष्ट उपचार और चिकित्सा शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जोधपुर एम्स की स्थापना दिवस समारोह में व्याख्यान देते हुए उन्होंने एम्स जोधपुर के लिए अगले 10 वर्ष की कार्य योजना में आधुनिक तकनीक, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और मरीजों के अनुकूल सुविधाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर एम्स राजस्थान में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।
1: लगभग 800 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 300 नर्सिंग स्टूडेंट्स और हैं और फैकल्टी स्ट्रेंथ भी 250 से ज्यादा है। हर दिन 6000 से ज्यादा ओपीडी केसेस और 250 से ज्यादा सर्जरीज दिए जा रहे हैं। तो एम्स जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक अग्रणी हॉस्पिटल के रूप में उभरा है और आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो अपना रहे हैं और जिस प्रकार से एकेडमिक वर्क लिया जा रहा है, जो एम्स का ब्रांड, जो नेशनल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, जिस प्रकार से बना है, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर में, ये तीनों में उत्कृष्टता से काम हो रही है।
0: इससे पहले मुख्य सचिव ने अजमेर में राजस्व बार एसोसिएशन के अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सरल बनाने में बेंच और बार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य सचिव ने राजस्व मामलों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों तथा काश्तकारों के भूमि अधिकारों और कब्जे की सुरक्षा सुनिश्चित करना राजस्व न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्व न्याय व्यवस्था में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता बताई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज बरसात हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की भी संभावना है। इससे पहले पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात तक रुक रुक कर चलता रहा। नागौर में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश के बाद किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खरीफ फसलों के खराब होने की आशंका है। करौली में देर शाम तेज बारिश हुई। डूंगरपुर जिले में भी रात भर हुई बारिश से मार्गिया बांध ओवरफ्लो हो गया। बांसवाड़ा में झमाझम बारिश हो रही है। बारा जिले में हुई अच्छी बारिश के बाद शाहबाद उपखंड के देवरी की पलको नदी का जलस्तर बढ़ गया। भरतपुर में देर रात एक घंटे तक हुई जोरदार बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। देश के हर जिले की स्थानीय कला, शिल्प और कृषि उत्पाद के साथ ही वहां के आर्थिक विकास को गति देने के लिए शुरू की गई योजना है एक जिला एक उत्पाद। ODOP को स्थानीय गली से वैश्विक दुकानों तक का सफर कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
2: एक जिला एक उत्पाद एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत किसी भी जिले के विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाती है। इसके बाद उसकी गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार कर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मदद मिलती है। एक जिला एक उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को आगे बढ़ाता है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर और 1 गेंद में 94 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 2 जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 108 रन की पारी खेली जबकि संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगी। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत प्रदेश में पहले दिन आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5921 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। मॉनसून की विदाई से पहले प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं झमाझम बरसात का दौर। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुने दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।
1: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: आवाज छोटे मजीद सोला और साथियों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रूपक नशे को कहे ना जिंदगी को हाँ, वाचक स्वर एवं प्रस्तुति सहायक मोहम्मद शरीफ छिपा और प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल।

जिंदगी प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा, एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर उम्मीद लिखी होती है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर सपना हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन कभी कभी इंसान कुछ ऐसी आदतों की गिरफ्त में आ जाता है जो धीरे धीरे उसकी खुशियाँ, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसका भविष्य और उसके सपने छीनने लगती हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं घेरता, उसकी परछाई पूरे परिवार पर पड़ती है। इसीलिए आज का संदेश बहुत साफ है, नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। जिंदगी मिली है तो इसे मुस्कुरा कर जीना है, हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना है। नशे की राह छोड़, सपनों की राह चुन, क्योंकि तुझे भविष्य के लिए जीना है। नशा शुरुआत में भले ही किसी को छोटा सा सहारा या मनोरंजन दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यही आदत इंसान की आज़ादी छीन सकती है। व्यक्ति कहता है, मैं जब चाहूँगा छोड़ दूंगा, लेकिन वक्त बीतता जाता है और वही चीज़ उसके निर्णयों और जीवन को प्रभावित करने लगती है। नशे की समस्या सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, यह परिवार से जुड़ी समस्या है, यह सामाजिक समस्या है, यह आर्थिक समस्या है और सबसे बढ़कर ये भविष्य से जुड़ी समस्या है।

0: हमने कुछ युवा साथियों से बात की। आप हैं?
1: मेरा नाम शिवदयाल बरोड़ है। नशा हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आज का युवा जो इस देश का भविष्य है, वह जाने अनजाने में नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। नशा शुरुआत में एक शौक, एक व्यसन या दोस्तों के दबाव के कारण शुरू होता है। कुछ लोग तनाव और दुखों से भागने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह है खुद में सबसे बड़ी समस्या है। नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, बल्कि हंसते खेलते पूरे परिवार को उजाड़ देता है। एक नशे की लत में डूबे व्यक्ति के घर में सिर्फ गरीबी, बीमारी और क्लेश का वास होता है। माँ की आंखों के आंसू, पिता की झुकी हुई कमर और बच्चों का अंधकार में डूबता भविष्य, यही नशे का असली चेहरा है। आओ आज हम संकल्प ले, नशे को कहे ना, जिंदगी को कहे हाँ।
2: मेरा नाम तनुज सोनी है। आज सिगरेट, शराब, गुटके से लेकर घातक ड्रग्स तक नशे का जाल हर तरफ फैल चुका है। शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है, कभी दोस्तों के बहकावों में आकर, कभी सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में, तो कभी जीवन के तनाव और दुखों से भागने के लिए। लेकिन इंसान जिसे एक बार का शौक समझ कर शुरू करता है, धीरे धीरे वह उसका गुलाम बन जाता है। नशा सिर्फ एक इंसान के शरीर को बीमार नहीं करता, बल्कि उसे सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। जब एक व्यक्ति नशे के दलदल में डूबता है, तो उसके साथ साथ उसकी माँ की उम्मीदें, पिता का मान सम्मान, बच्चों का भविष्य भी डूब जाता है। पैसा, सेहत, इज्जत और परिवार, नशा सब कुछ छीन लेता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ पुलिस या फिर कानून के पास नहीं है, इसका असली समाधान हमारे भीतर है। हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन या फिर तनाव का इलाज सिर्फ नशा नहीं है। अगर जीवन में कोई परेशानी है, तो अपने माता पिता और दोस्तों से बात करें, खेलकूद से जुड़ें, रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि हम अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार के नशे को पेड़ नहीं पसारने देंगे। एक स्वस्थ शरीर और मजबूत मन के साथ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।

0: दोस्तों, एक घर की कल्पना कीजिए। घर में माता पिता हैं, बच्चे हैं, परिवार में खुशियां हैं, लेकिन घर का एक सदस्य नशे की आदत में फंस जाता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। बात बात पर तनाव, पैसों की परेशानी, परिवार की चिंता और बच्चों के मन पर गहरा असर। माँ बेटे से पूछती है, बेटा आज फिर इतनी देर से क्यों आया? बेटा कहता है, माँ बस दोस्तों के साथ था। माँ बोलती है, बेटा मुझे तेरी चिंता रहती है, कुछ दिनों से तू बहुत बदला बदला सा लग रहा है। बेटा कहता है, माँ आप बेवजह चिंता करती हैं। माँ कहती है, माँ की चिंता कभी बेवजह नहीं होती बेटा। माँ चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है। कई बार परिवार समय रहते बातचीत कर लें तो स्थिति संभाली जा सकती है। इसलिए जरूरी है बच्चों और युवाओं से संवाद हो, उनकी बातें सुनी जाएं, उनके सवालों का जवाब दिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति नशे की समस्या में फंस गया है तो उसे अपमानित करने के बजाय उचित मदद की ओर ले जाया जाए। आप हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना नागौर के अधीक्षण अभियंता श्री P.S. तंवर।
1: नशे को ना और जिंदगी को हाँ। आज जो है ये नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को जो निगलता जा रहा है, उसकी उम्मीदों को, उसके सपनों को जो ये नशा उगलता जा रहा है, इसका सीधा नुकसान राष्ट्र की प्रगति को है। युवा, किसी भी देश का युवा जो है वो उस राष्ट्र की मूल संपत्ति है और युवा की ऊर्जा पे ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। युवा की ऊर्जा आज की तारीख में किस दिशा में जा रही है वह राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा युवा अपनी छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर या किसी सो कॉल्ड फैशन के दौर के ऊपर या किसी के उकसाने पे अगर नशे की लत में गिरता है तो ये उस युवा का स्वयं का व्यक्तिगत नुकसान होने के साथ साथ ही उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है और अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह राष्ट्र का भी बड़ा नुकसान है। हम एक नादानी के अंदर और युवा अवस्था में इस नादानी में हम ये भूल कर जाते हैं कि क्या हम

0: ये कर रहे हैं और इससे हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। एक बार इस गिरफ्त में पड़ने के बाद में नशे का मतलब ही यही है कि नशा जो है वो जाने अनजाने में किया जाता है, परंतु वो अपनी गिरफ्त में उस व्यक्ति को ले लेता है। तो नशे की गिरफ्त से निकलें युवा और अपना भविष्य संवारें, और जिस कारण तुमने जन्म लिया है, जिस परिवार के लिए तुमने जन्म लिया है, जिस समाज के लिए तुमने जन्म लिया है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो वो प्रयास करना ज्यादा जरूरी है। और नशे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ इसी विवेक का जागना जरूरी है और अपने मन में संकल्प लेना जरूरी है। एक कोई बुरी आदत अगर आपको लग जाती है तो उससे छूटना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें तो। तो नशे को मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें, राष्ट्र की प्रगति को हाँ कहें, अपने परिवार की खुशियों को हाँ कहें और अपने अच्छे स्वास्थ्य को हाँ कहें।
1: अच्छी संगत इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है और गलत संगत रास्ता भटका सकती है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अपने मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करें। अगर कोई दोस्त आपको किसी नशे की ओर धकेलता है तो उसे स्पष्ट शब्दों में कह दें, नहीं, मुझे नशा नहीं करना, क्योंकि कई बार एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बचा सकता है। भुतड़ा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नागौर के संचालक डॉक्टर बीएल भुतड़ा ने हमें बताया।
2: मैं डॉक्टर बीएल भुतड़ा, भुतड़ा हॉस्पिटल नागौर पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। नशे के बारे में हमने ये देखा है, पहले तो ये भारत के दूसरे राज्यों में इसकी प्रवृत्ति ज्यादा थी, उसके लिए पंजाब इसके लिए बदनाम था, लेकिन इन दिनों में ये देखा जा रहा है राजस्थान में भी इस प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में। उसमें नागौर का नाम भी हम देखते हैं, आए दिन नशा बेचने या करने वाले पकड़े जाते हैं। नशा बेचने वाले तो इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको जल्दी पैसे आराम से मिल जाते हैं, और खरीदने वाले इसलिए पकड़े जाते हैं, वो चोरी चकारी, उनको रोज पैसा चाहिए नशा के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पैसा लेने के लिए या तो इलीगल काम करेंगे या फिर चोरी करेंगे, वो पकड़े जा रहे हैं। स्पेशली ये भी अधिकतर युवाओं में देखा जा रहा है, बुजुर्ग लोगों में इसका प्रभाव नहीं है, वो तो बेचारे बीड़ी पी के अपना काम चला लेते थे। बाया दिन अमल, इसमें डोडा, ये सारी चीजें नई पीढ़ी में ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर यही हालात रहे, इस पे काबू नहीं पाया गया, लोगों को शिक्षित नहीं किया गया, नशा छोड़ने के लिए कोई कैंप नहीं लगाए गए, तो आने वाले 2-4 सालों में स्थिति काफी बदतर हो जाएगी और उसके परिणाम समाज को भुगतने पड़ रहे हैं और पड़ने पड़ेंगे, क्योंकि चोरियां, चलते रास्ते चैन खींचना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये आए दिन अपने देख रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ज्यादा इसमें शिक्षा का रोल रहेगा और ऐसे लोगों को नशा मुक्ति के लिए कोई न कोई कैंप सरकार लगावे और उनको प्रोत्साहित करे, तो जाके इसमें कुछ सुधार हो सकता है। यही हमारा कहना है, नशे को ना कहें और स्वास्थ्य को हाँ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

0: मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप देश की शक्ति हैं। आपके हाथों में मोबाइल हो सकता है, लेकिन उन्हीं हाथों में किताब भी हो सकती है। आपके सामने दोस्तों की महफिल हो सकती है, लेकिन उसी समय खेल का मैदान भी आपका इंतजार कर सकता है। आपके पास वक्त है, ऊर्जा है, सपने हैं, तो फिर इन सपनों को नशे के हवाले क्यों करना? खेलिए, पढ़िए, संगीत सीखिए, कला सीखिए, नई तकनीक सीखिए, अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि जिस युवा के हाथ में हुनर होता है उसके भविष्य में उम्मीद होती है। हमें बताया,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, सबको सप्रेम सादर नमस्कार। मैं शारदा गुदारा नशे को ना और जिंदगी को हाँ विषय पर विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। ये विचार जीवन में अपनाने पर हम सब की जिंदगियों को अवश्य बचाएंगे एवं कामयाब भी बनाएंगे। साथियों, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने पर अधिकांश संख्या में देश के युवक युवतियाँ नशे की लत के शिकार बन करके अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने लगते हैं। अच्छी संगति मिलने पर मनुष्य उन्नति के पथ पर चल पड़ता है, जबकि बुरी संगति से जीवन बर्बाद हो जाता है। जो लोग भोले भाले बालकों को और युवक युवतियों को गुमराह करके नशे की लत सिखा कर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं हो सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, विधाता नरक में वास भले ही दे, परंतु दुष्ट का संग नहीं दे। अभिभावकों को अपनी संतानों को सदैव सज्जनों के संग व दुर्जनों के त्याग के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। यहाँ यह प्रकाश डालना

आवश्यक है कि नशे कितने प्रकार के होते हैं, नशे के लगातार सेवन से जिंदगी किस प्रकार बर्बाद हो जाती है। प्रत्येक प्रकार का शरीर में जाने वाला पदार्थ जो चाहे किसी भी माध्यम से जाए एवं शरीर में जाने पर मादकता पैदा करके चेतना पर अपना काबू कर लेता है, मनुष्य अर्ध चेतन या अल्प चेतन अवस्था में अपनों को भूल जाता है या मस्तिष्क पर से नियंत्रण खो जाने से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में अनेक उत्पाद करता है एवं स्वयं को व परिचितों अपरिचितों का कितना भी नुकसान कर देता है, वो नशे की श्रेणी में आता है। नशे से मुख्यतः आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के नुकसान होते हैं। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्षणिक मादकता की अनुभूति के लिए उड़ा देते हैं। नशे की लत ऐसी लत है कि ज्यो ज्यो नशा किया जाता है त्यों त्यों और अधिक नशा करने की हूक मन में उठती रहती है। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और तेज होती है, वैसे ही नशे की पूर्ति के लिए किया गया नशा और नशा करने के लिए बाध्य करता है। कई नशे तो इतने महंगे हैं कि घर परिवार की सारी संपत्ति बेचने को मजबूर होना पड़ता है। परिवार के सदस्य यदि नशा करने के लिए मना करें तो नशेड़ी अपनी लत की धुन में उस सदस्य को पीटना दे तो मामूली बात है, जान से भी मार देते हैं। शराब के नशे ने जितने घर बर्बाद किए हैं उतने तो यमराज ने स्वाभाविक मौत के कारण भी नहीं किए होंगे। तंबाकू से कैंसर ग्रस्त होकर करोड़ों लोग असामयिक ही काल के ग्रास में चले जाते हैं। स्मैक आदि महंगे नशे करने वाले चोरी, मर्डर, अपहरण आदि घिनौने कार्य धन प्राप्ति के लिए करने में जरा भी संकोच नहीं करते। कहाँ तक गिनाए, यदि जिंदगी को हाँ कहना है तो नशे को ना कहना ही एकमात्र विकल्प है। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और विवेक तथा आत्मबल के द्वारा नशे की लत को एक छटके में उखाड़ फेंक देना वापस नशे की ओर मुंह भी नहीं करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भारत सरकार द्वारा इसके संदर्भ में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। हाल ही में 2 अगस्त 2026 इसी साल प्रधानमंत्री जी द्वारा जेंजीज को नशे से दूर रखने और विकसित भारत संकल्प से जोड़ने के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया है। हमारे राजस्थान में एक पारंपरिक लोक गीत है जिसमें एक महिला अपने पति से नशा नहीं करने की मार्मिक अपील करती है। उसके बोल हैं, मत

0: अंत में मेरी यही अपील है कि समाज के सभी लोग नशे के विरुद्ध एकजुट और जागरूक होकर सामूहिक प्रयास करें, जिससे जिंदगियां बच जाए और नशा हमारे समाज से जड़ मूल से नष्ट हो जाए। धन्यवाद।
1: नशे की रोकथाम में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे से सिर्फ ये पूछना पर्याप्त तो नहीं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कभी ये भी पूछिए, तुम खुश तो हो, कोई परेशानी तो नहीं, किसी बात की चिंता तो नहीं, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता, क्योंकि संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, संवाद विश्वास से होता है। याद रखिए, डांट से पहले संवाद, आरोप से पहले समझ और दूरी से पहले अपनापन, यही परिवार को मजबूत बनाता है। और आप हैं?
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम रोज, MD साइकेट्री, जेलन हॉस्पिटल नागौर। आज के समय में खास तौर से युवाओं में ये जो विषय है, नशे को ना जिंदगी को हाँ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे चर्चा करना अत्यंत जरूरी है। नशा एक सामाजिक कुरीति के साथ साथ एक मानसिक रोग है। जिस तरह से हम लोग शारीरिक रोगों या अन्य मानसिक रोगों त्वरित इलाज की तरफ आते हैं, उसी लाइन पे मान इस नशे के भी रोग की पहचान करके समय रहते और इलाज की तरफ लाना है। नशे से पीड़ित आदमी ना सिर्फ शारीरिक परेशानियां उठाता है, शारीरिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, फाइनेंशियल, हर तरह से हर डोमेन में नशा जो है व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। तो आओ सब मिलकर अपन हम लोग एक प्रण लें कि सबसे पहले खुद को, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को इस नशे की दलदल से लोगों को निकालने में मदद करें। मैं जैसा कि यहाँ नागौर सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूँ मानसिक रोग और नशा मुक्ति विशेषज्ञ के रूप में, तो हम लोग यहाँ हर दिन 25 से 30 मरीज OPD पे नशे का इलाज के लिए आते हैं। तो अपने नागौर के आसपास, नागौर में जिस जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है नशे के इलाज के लिए, यहाँ से अपने पास में जोधपुर है, वहाँ पे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, एम्स की तरफ से है, वहाँ पूरा इलाज होता है। यहाँ से इधर बीकानेर की तरफ, वहाँ इंडोर की ATF की फैसिलिटी है। तो आप लोग जितना जल्दी इस चीज को पहचान के और इलाज की तरफ लाएं। नशा एक रोग है और रोग का इलाज होना जरूरी है, बिना इलाज के नशे से निकलना मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दें और ताकि वो इलाज तक आए और हम सब लोग मिलके और इस नशे के इस कुरीति को कम कर सके। नशे के लिए सरकारी जैसे जितनी भी योजनाएं होती है या फिर कानून होते हैं, वो कानून और वो सरकारी उपक्रम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक समाज इसमें भागीदारी नहीं निभाएगा। समाज को एकजुट होके नशे को ना कहना है। आसपास में जो भी नशा करता हुआ, जो भी नशे से पीड़ित कोई व्यक्ति मिले, तो उनको ग्रामीण स्तर से लेके सामाजिक स्तर से लेके उनको इलाज तक, सबको एकजुट होके इलाज तक लाने का प्रयास करेंगे, तब जाके अपन इस चीज से बचा सकेंगे लोगों को। नशा खास तौर से युवा जो है, जिनका भी पूरा करियर है, पूरा करियर बनाना है, उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। नशा व्यक्ति की दिशा दशा सब बिगाड़ देता है। तो आज से एक संकल्प लें और जितना एक अपने आप को एक टारगेट दें कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दूंगा नशा मुक्ति हेतु। तो अपने आसपास यहाँ जैसे हमारा जेलन में एक डिपार्टमेंट है साइकेट्री का, वहाँ इलाज होता है, सब सुविधाएं हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करके इलाज तक लेके आए। तो मेरा अंत में संदेश यही है कि जितना जल्दी अपन लोगों को प्रेरित करके और इस इलाज तक लेके आएंगे, उतना ही उन लोगों की आगे लाइफ की क्वालिटी है वो हमेशा बरकरार रहेगी। नशा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उस पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। अगर कोई परिवार में एक आदमी नशे से पीड़ित है तो उस पूरे परिवार की नींद अच्छे से नहीं आती, पूरा परिवार मानसिक अवसाद में जाने का चांस होता है। तो जैसे शरीर का कोई रोग होता है तो उसमें एक आदमी तंग होता है, नशे में ऐसे नहीं होता, नशे में पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है उससे। तो अपन सब लोग मिलके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें नशे मुक्ति के हेतु और एक संकल्प लें और एक शपथ दिलाएं सबको कि नशा मुक्त जीवन अपन जिए सब लोग। धन्यवाद।

0: अगर कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। मदद लेना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना हिम्मत है। परिवार साथ दे, दोस्त साथ दे, समाज सहयोग करे और आवश्यकता होने पर योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ या नशा मुक्ति सेवा केंद्र से सहायता ली जाए। किसी व्यक्ति को ताना देने के बजाय उसे संभालना चाहिए और ये कहना चाहिए, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरकर संभलना भी तो जिंदगी का हिस्सा है, अंधेरे के बाद ही तो उजाला होता है। बस हिम्मत मत हारना ए दोस्त, हर नई सुबह में एक नया रास्ता होता है। आप हैं एडवोकेट श्री राजेंद्र सिंह राठौड़।
1: मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ एडवोकेट, वर्तमान में नागौर में प्रैक्टिस करता हूं। आजकल समाज में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों से भी कई इस प्रकार के धंधों में लिप्त करके जो बड़े गुंडे तबके के व्यक्ति होते हैं गलत कृत्य करवाते रहे। यद्यपि हिंदुस्तान में बहुत सख्ती से कानून लागू किए हुए हैं, NDPS जो कानून बना हुआ है उसके तहत जो 8/15, 8/29 और 8/22 कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई रखता है सामग्री बिना अवैध लाइसेंस के, तो उसमें प्रावधान भी है कि किसी को 10 वर्ष की सजा है, कुछ मामले हैं जिनमें उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन इन सबको ताक पर रखते हुए आजकल देखने में आ रहा है कि इस प्रकार से MD का नशा जो है समाज में आप एक जहर की तरह चल रहा है। बावजूद इसके आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों से इस प्रकार की पूड़ियां इधर से उधर इधर उधर से करते हुए, और कई लोगों को, हालांकि SP नागौर ने इस प्रकार का एक मुहिम चला करके कई लोगों को अरेस्ट भी किया है और काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अपराध की प्रवृत्ति है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे जब कोई व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसा कमा करके एकदम से बिल्डिंग बना लेता कर लेता है तो रोल मॉडल बन जाते हैं, और इस प्रकार उनको देख करके नए बच्चे जो आते हैं वो अपराध की जो है इस श्रृंखला से जुड़ते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब जो 66 वाला जो एफ वाला इसमें NDPS में प्रावधान है उसके तहत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सीज करना ये भी आया है, और ये जब से चलन हुआ है तो इस पर रोकथाम की भी गुंजाइश बनी है। और उत्तरोत्तर अगर समाज में ये जो कानून बने, कानूनों से कुछ नहीं होता है, अवेयरनेस होती है समाज की, सामाजिक दृष्टि, हमारा सामाजिक दायित्व क्या बनता है। अगर मोहल्ले में इधर उधर किसी बच्चे को गलत हरकत करते हुए देखते हैं तो बड़े बूढ़ों का दायित्व बनता है कि उनको रोके करें, और घर वाले भी इसको शेखी नहीं बका रहे। पहले होता था कोई किसी के बारे में पता चल जाता था कि ये 2 नंबर का काम करता है तो शादियां टूट जाती थी, आजकल तो शादियों का एक चलन बन गया है कि ये 2 नंबर का धंधा करता है तो उसको बहुत बड़ा मान करके उसे रिश्ते बनाते हैं। तो ये समाज में जो प्रवृत्ति है तो नशे

0: के प्रति प्रवृत्ति इंसान की जो है दृष्टि से देखने वाली होनी चाहिए, न कि उसको अप्रिशिएट करने की, बल्कि ये चलन ज्यादा हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश सभी लोगों से है कि नशे से स्वयं दूर रहें और जो कानून प्रावधान जो बने वो अपनी जगह है, लेकिन अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रत्येक जो बच्चा है या जो बड़ा है उसको चाहिए कि इस प्रवृत्ति को जितना हो सके रोकथाम करके रोकने का अपनी तरफ से भी सार्थक प्रयास करें।
1: नशा मुक्त समाज केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता की, शिक्षकों की, समाज की, युवाओं की और हर जागरूक नागरिक की। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां खेल के मैदान आबाद हों, पुस्तकालयों में रौनक हों, युवा कौशल सीखें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें और समाज में स्वस्थ मनोरंजन के अवसर बढ़ें। हमारे राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, हमारे युवा मेहनत में विश्वास रखें, नशे में नहीं। जिला पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक नागौर श्री आशाराम चौधरी ने हमें बताया,
2: नशे का जो प्रचलन खास तौर से युवाओं में जो बढ़ रहा है वो देखने में आ रहा है कि इसमें एक MD इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक नशे हैं, सिंथेटिक है। स्मैक भी पूरी सिंथेटिक और नकली स्मैक आ रही है, MD पूरा सिंथेटिक नशा है केमिकल्स को मिला के। इसमें इतने खतरनाक रसायन यूज होते हैं कि इसमें ज्यादातर इसका सेवन करने वाले 2 से 3 साल में उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, किडनी लीवर सब एक साथ बैठ जाते हैं और ये क्षणिक उत्तेजना के लिए युवा इसका शिकार हो जाते हैं। जिस परिवार में एक नशा करने वाला हो जाता है वो पूरा परिवार की शांति भंग हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तबाह हो जाते हैं। जिस नशा करने वाले ने भी नशा छोड़ा है, छोड़ने के बाद में उसने ज्यादा बेटर फील किया है, ये तो करता जाता है तब तक करता है। जिस दिन किसी ने स्टॉप कर दिया और उसने 6 महीने नशा नहीं किया तो उसकी जीवन की क्वालिटी, उसके नींद की क्वालिटी, उसके व्यवहार की क्वालिटी, परिवार का बहुत ही बेहतर माहौल हो जाता है। जो किसी भी प्रकार का नशा है उससे मुक्त होना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
3: सर, पुलिस विभाग के आप मुखिया होने के नाते नागौर जिले में इसकी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है तो, और इसको समाज में सुधार लाने के लिए पुलिस की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
2: नागौर जिले में हमने एक इसकी सप्लाई चेन है वो व्यापक रूप से कार्रवाइयां करके और तोड़ी है, जिसमें हमने NDPS के 4 गुना मुकदमे, 4 गुना रिकवरी और जो बड़े बड़े तस्कर है वो सभी आज जेल में है, लेकिन फिर भी छुटपुट कहीं से आ जाते हैं। तो इसके लिए सामाजिक चेतना भी जरूरी है। एक सप्लाई चेन तोड़ना एक काम है और दूसरा काम है कि उसको सामाजिक रूप से इस जागृति आवे कि नशा मुक्त जीवन है, वो बेहतर जीवन है, बेहतर समाज है।
3: विशेष रूप से जो युवा साथी हैं उनको और जो नशे की प्रवृत्ति में इसमें डूबे हुए हैं उन लोगों को आप अपने पुलिस विभाग की ओर से क्या एक संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं उनको कहना चाहूंगा अच्छी आदतें अपनाएं, बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश अपने आप छूट जाएगी यदि आपने अच्छी आदतें अपनाई। अच्छे आप सुबह टाइम से उठे, व्यायाम किया, दौड़ लगाई, कसरत करी, अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करी तो अच्छी संगत शुरू करी तो बुराई अपने आप छूटती है, लेकिन आप उसमें फंसे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे तो फिर दिक्कत आती है।

0: और आप हैं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक एडीजे नागौर श्री विक्रम सांखला।
1: नशे को ना और जिंदगी को हाँ की जो मुहिम आप द्वारा चलाई जा रही है उसके संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि नागौर के परिप्रेक्ष्य में निरंतर जो है एनडीपीएस के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। न्यायालय की अगर बात करूं कि 350 के आसपास जो है मुकदमे पेंडिंग है और 150 के आसपास जो है रिमांड पेपर पेंडिंग है, इसको देखते हुए ये लगता है कि 500 मुकदमे इस क्षेत्र के जो है वो न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत हो चुके हैं और बाकी के संबंध में जो है वो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह के अपराध जो आंकड़े हमारे सामने देखने को मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि नशे की प्रवृत्ति जो है वो नागौर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है। इसको रोके जाने की जो है महती आवश्यकता है और इसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से है। जो व्यक्ति जो है नशे की लत में पड़ा है उसको उससे निजात पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लगभग असंभव है उसका जो है इस नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकल पाना। और जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशा हर व्यक्ति को सुलभ हो रहा है, इसलिए उसका जो है वो नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोसाइटी की और समाज की सभी की ये जिम्मेदारी है कि हमें जहां भी सूचना मिलती है कि नारकोटिक पदार्थ का धंधा किसी भी तरीके से किया जा रहा है तो हमें जागरूक होकर संबंधित अथॉरिटी जो भी है उसको सूचित करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके। समाज में जो है नारकोटिक पदार्थ जो है वो उपलब्ध सुलभता से नहीं होंगे तभी जो है इससे बचाव हो सकता है, अदरवाइज जो है ये समस्या जो है एक विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अकेली पुलिस या अकेले न्यायालय जो है इस समस्या से समाज को निजात नहीं दे सकता। इसके लिए आवश्यक है कि समाज जागरूक हो, लोग जागरूक हो और जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है कि इस तरह का अवैध मादक पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है, लोगों तक इसकी पहुंच कराई जा रही है, तो

0: अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोग जो है इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, जिससे जो है संबंधित अधिकारी उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस मुहिम को आगे पहुंचा सकते हैं और इस नशे के कारोबार को बंद करवा सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि सभी जनमानस को अगर इस बाबत कोई भी जानकारी मिलती है कि नागौर शहर में या कहीं भी किसी भी तरीके का अवैध मादक पदार्थ का धंधा किया जा रहा है, तो कृपया करके इसकी सूचना जो है सक्षम न्यायिक अधिकारी को या सक्षम पुलिस अधिकारी, जो भी अथॉरिटी है, उसको जो है तुरंत प्रभाव से दें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि हम इस मुहिम को सफल बना सके। थैंक यू वेरी मच।
1: श्रोताओं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें माँ की दुआ है, पिता का भरोसा है, दोस्तों की दोस्ती है, सपनों की उड़ान है, मेहनत की चमक है और भविष्य की अनगिनत संभावनाएं हैं। इसे किसी ऐसी आदत के हवाले मत कीजिए जो आपसे आपकी आजादी छीन ले। नशे की राह में मंजिल कभी मिलती नहीं, खुशी की कोई किरण वहां खिलती नहीं। कदम बढ़ाओ तो सपनों की तरफ बढ़ाओ, जिंदगी दोबारा हर किसी को मिलती नहीं। और याद रखिए, नशा हमें कुछ पल का भ्रम दे सकता है, लेकिन जिंदगी हमें पूरा भविष्य देती है। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपने आप से कहिए, मैं नशे को ना कहूंगा क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी से प्यार है। तो दोस्तों, ये था आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से विशेष रेडियो रूपक, नशे को ना जिंदगी को हाँ। तकनीकी सहयोग प्रतीक वर्मा, शोध आलेख वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छीपा, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार। इस उम्मीद वादे के साथ अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने सपनों के लिए जिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए जिए। मंजिलें उनका इंतजार करती हैं जो संभल कर चलते हैं, जिंदगी उनके साथ चलती है जो खुद से वादा करते हैं। नशे की राह में मत खोना अपना कारवां, जिंदगी अनमोल है, इसे कहो हमेशा हाँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूपक नशे को कहे ना जिंदगी को हाँ। वाचक स्वर एवं प्रस्तुति सहायक मोहम्मद शरीफ छिपा और प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया फिल्म शिकार से। आवाज मोहम्मद रफी की है, संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत को लिखा है हसरत जय।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत RD बर्मन की आवाज में संगीत भी RD बर्मन का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म शोले।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत राजेश रोशन का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, फिल्म बाबू।

चीज मांगते हैं।

0: बताओ।
1: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
0: अच्छा जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। आवाज अरिजीत सिंह की फिल्म जिद।

आवाज उदित नारायण की फिल्म जमीर, संगीत जतिन ललित का, गीतकार इसरार अंसारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से, जिसमें आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: विविध भारती।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें, सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द, इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है, आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बनी।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: विराट जीवन की कहानी,
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

वादा रहा। इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज, गीतों संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनफो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
3: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने

0: वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और एआई से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आजमी का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं। सुनिए अगला गीत।

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो

0: तो पागल है
1: दुश्मन,
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
1: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हम जिंदा रहते हैं, गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकार हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना, संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद पड़ी खदानों को फिर से शुरू करने के साथ ही उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ये बात आज झुंझुनू के खेतड़ी नगर स्थित खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में सेवा संकल्प कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि नई खदानों के लिए G4 और G3 स्तर की परियोजनाओं को टेंडर प्रक्रिया में भेजा जा रहा है। श्री दुबे ने कहा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा। उन्होंने HCL कर्मचारियों के देश की प्रगति में योगदान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में कर्मचारी यूनियनों की ओर से विभिन्न समस्याओं और प्लांट में नई तकनीक की मशीनें लगाने की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और क्वार्ट्ज फेल्सपार की सैंपलिंग तथा विश्लेषण कार्य में तेजी लाई जाएगी। खान और पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल जयपुर में खान विभाग, भारतीय खान ब्यूरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस कार्य के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और GSI के बीच जल्दी ही करार किया जाएगा। उन्होंने क्वार्ट्ज फेल्सपार की शेष लीजों का 15 दिन में भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज मलबे पर शोध और उसके वैज्ञानिक निस्तारण की जरूरत पर भी चर्चा हुई। राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2026 का उद्घाटन किया। पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू पर्यटन और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि लोगों को यहाँ प्रदर्शित नवाचारों को देखने के लिए आना चाहिए।
1: काफी ब्रॉड बेस्ड एग्जीबिशन है और सभी से मैं आमंत्रित करूंगा कि इस एग्जीबिशन को आके अगले दो दिन तक बिरला सेंटर पे अवेलेबल है और सभी देखें। बाहर एक जो नवाचार है ये भी डिस्प्ले किया गया, जिसमें देयर इज अ कैरावैन जो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी आप लेके जा सकते हैं। मुझे अभी देखा था, वेरी कंफर्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स के लिए। तो नवाचार हैं और राजस्थान टूरिज्म वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको मैं बधाई देता हूँ।
0: पाली में देसूरी नाल मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये रोक देवझूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले और रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगाई गई है। देसूरी नाल मार्ग पर विकट मोड़ और तेज ढलान होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ये रोक 25 सितंबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में बारिश हुई। सवाईमाधोपुर, करौली, नागौर, अजमेर और जयपुर में करीब 4 इंच तक बरसात दर्ज की गई। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, झुंझुनू और बीकानेर में भी करीब 2 इंच तक पानी बरसा। जयपुर और सीकर सहित कई शहरों में निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिलानी, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, फतेहपुर, झुंझुनू और अजमेर में तापमान में कमी आई। इस बीच पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट है। कल से बारिश की गतिविधियां कमजोर होने और पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली, किससे कही और आपने कब समझी आंखों की भाषा, किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है, बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो, श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्की कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए, तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं, पर अपनी पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक पे नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुजबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं, शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे हैं, नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा। लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने, खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना, बिछड़ने की छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिले, धन्यवाद। मेरा नाम लिखा है, धन्यवाद। तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए, और जो गाने हैं, शब्द हैं, शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब जरा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज। मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नजर आया था, लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं। डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहाँ, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया, और कागज था मन मेरा, मेरे महबूब, वगैरह वगैरह गानों की लंबी फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था, आपकी नजरों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जरा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी जिंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नजरें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है, वाह मेरा चयनित गीत। ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार की आवाज थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गजब के बोल थे, जरूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की। तो क्या ऐसी आंखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा, ये भी आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद, जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है। इस गीत को मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था। क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है। और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं। हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोटपैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोटपैड भी, मोबाइल का नोटपैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं। जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल।

बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें ही बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में है, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहां ध्यातव्य है कि देशो ही द्विविधः, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है। कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए। आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना हम सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो जरा बताइएगा। आंखों की, चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें। अगली फिल्म का नाम

0: शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनकी उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनों वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूँ, चुप चुप खड़े हो, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी। अब बस, बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष, और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे, और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसा लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसा लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम।

घर फिल्म का गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन, बिल्कुल सही जवाब आया है। और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आंखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आंखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्प्रेरी बेसिस पर आई थी। भला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थीं और वो आंखें बोलती आंखें थीं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे। एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन की परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहते हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताज़ा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी, आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको बूझना है, हीरो हीरोइन का नाम

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए, आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते रहे हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी अपनी भावनाओं को कागज पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़े, और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया, और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बूझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले,
2: हाय हाय।

0: इशारे ये अदाएं।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: 1942 के आंदोलन में देश में कई जगहों पर प्रति सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे जारी रखा। गुप्त रेडियो केंद्र शुरू किए गए। क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राज सत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राज सत्ता की रीढ़ ही सेना और राज सत्ता के विरुद्ध चली जाती है तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्धपोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी उसके कट परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।
0: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थीं? अंग्रेजी राज सत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
1: वंदे मातरम, इस शब्द में है धधकती राष्ट्र भावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि

0: भूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना, इन शब्दों में है खड्ग की शक्ति।
1: अगस्त 1947 को हमारी मातृभूमि पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम पूरे देश भर में सुनाया जा रहा था, और उसी समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र से किराना घराने की प्रतिभावान गायिका का दिव्य स्वर गूंज रहा था। गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर अपने मधुर स्वरों में तिलक कामोद राग में स्वयं तैयार की हुई रचना में वंदे मातरम प्रस्तुत कर रही थी।

0: 15 अगस्त 1947, क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे, फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे, उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्रभावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदिशक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम 2 चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,

इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत रूप धारण करने वाली प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

0: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला की 46वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यात्सुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में

0: कार्य अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं।
5: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 1947 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां।

0: होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
2: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योइना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और ST-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
5: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: आहा, क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: ट्वेल्व ओ क्लॉक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोलते कनू रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना, जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहां होता है वहां टिकता ही कहां है, या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया,
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली पहली सखी जिनका कॉल लगा है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसी घर पर रहती हूँ, शेरो शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेरो शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओ, क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है खूबसूरत।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है। और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: ये जो चिलमन है

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ,
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सब।
1: हाँ,
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी के मोदक का भोग लगाया। हेलो
0: अरे वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ,
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में है। और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: लिए हम प्रार्थना
1: धन्यवाद।
0: करते हैं। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा और देवा, गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ,
0: बहुत
1: वो
0: बहुत प्यारा
1: गाना।
0: सा गीत है ये। तो बहुत अच्छा सा
1: हाँ
0: ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं अभी।
2: देवा हो देवा गणपति देवा,

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: नाम कल्पना मनोरे है और मैं भूली गांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ,
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए आप क्या करती हैं कल्पना।
1: जी मैं आंगनवाड़ी मदद हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में वो कौन सा है।
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती हैं ना।
1: हाँ सब
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको,
1: कि मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी बच
1: ड्राइंग
0: हाँ
1: करना।
0: अच्छा आप आंगनवाड़ी में काम करते हो, वहां पर बच्चों को पढ़ाती हैं।
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ,
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए।
1: तारों का चमकता चेहरा हो,
0: तो
1: फूलों
0: ये
1: की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।

0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: जी मैम नमस्ते, मैं
0: नमस्ते।
1: कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए, आप जो करती हैं आपका ये जो बुटीक चलाती हैं, तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं, सलवार
1: जी मैम मैं
0: सूट वगैरह?
1: लेडीज, हाँ मैम जी मैम मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा। तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना, और
1: जी
0: सलवार
1: मैम
0: सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो
1: जी
0: वगैरह
1: मैम
0: काफी चल रहे हैं ना।
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सा
1: मैम
0: बनवा
1: इस
0: देते
1: समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और
0: हैं?
1: साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना, कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं, उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
1: हाँ
0: सूट सिलवा
1: बहुत अच्छी
0: सकते
1: अच्छी
0: हैं।
1: ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडीज से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम फरजाना सती शेख बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी,
1: हाँ,
0: आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ये दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है।
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से
1: हाँ,
0: है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकती है ना।
1: अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है। हाँ
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई हैं अब, है ना?
1: हाँ बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से। चंदन
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं
1: का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है,
0: अच्छा।
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना,
0: हाँ, बहुत अच्छा,
1: और
0: बहुत बढ़िया
1: बहू
0: नाम
1: है
0: है।
1: तो नीलोफर और बेटा है तो सबीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो, हाँ
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा
1: क्योंकि
0: गाना है, मुझे भी सुनना है
1: मेरी
0: तो
1: बेटी है ना बिजली वाली,
0: हाँ
1: उनको बहुत पसंद है,
0: अच्छा, अरे
1: वो
0: वाह,
1: मोबाइल में रखेगी ना वही गाना रखेगी, उनके पप्पा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है, अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए
1: हाँ
0: आपके साथ साथ मैं भी ये सुन लेती हूँ, ये गीत मुझे भी बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती, विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली, हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे, विविध भारती जैसे हमें
0: बिल्कुल,
1: सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए।
1: नमस्ते।
0: तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना, कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना, सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे सोनू निगम फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हॅलो सहेली.
1: नमस्कार, मैं संभाजी नगर से बात करनी निर्मला कर रहा है।
0: अच्छा, आप छत्रपति संभाजी नगर से
1: समझ
0: बोल रही
1: रहा
0: हैं निर्मला
1: हाँ।
0: जी.
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे।
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे
0: तो
1: एक्चुअली में।
0: जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं
1: हाँ
0: सब पसंद है ना आपको?
1: हाँ
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाँ गणपति का कौन सा गाना सुनाने वाली
0: तो ठीक है, हम ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्लारे बोल रही हूँ,
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
1: हाँ।

0: तो बताइए, आप पढ़ती हैं?
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती है, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है,
0: सखी सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ
0: अच्छा, यानी कि साची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना?
1: हाँ
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना,
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा सांची को।
2: लक

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है। जी
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: हाँ,
1: दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ,
0: अच्छा, तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। जी
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है।
2: हेलो। हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ना बहुत बहुत बड़ा काम
1: हाँ।
0: है। आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा, कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे। सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, या
0: अरे वाह,
1: रिटायर में जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई ना हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ नहीं,
1: भाग दौड़ में लगा
0: बच्चे
1: देते
0: छोटे हैं
1: हैं।
0: आपने बताया, 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे
0: हाँ।
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक
0: हैं।
1: बार विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन।
1: टाइम है।
0: नहीं सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है, इस मोड से जाते हैं, कुछ
0: है,
1: इस
0: क्या
1: प्रकार
0: बात
1: दम
0: है,
1: रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें। हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन।
1: ना कश्मीर, हम
0: बिल्कुल
1: मिलके
0: बिल्कुल
1: जाइए,
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते हैं।
1: आइए और फिर देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत, जो मुझे भी बहुत पसंद है।

आज की हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं, आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 400-24662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002-4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि

0: सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा, कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है। तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया। ओमी? कौन ओमी? दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी। चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया। वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा नालायक, यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

0: आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा। अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी? ओमी, ओमी सुन रहे हो ना? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा
1: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाए। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों, आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं, और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता, मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती, हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूं और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूं, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितनी ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहां है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूं और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहां कोई कभी आया था, और वो कहां रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूं। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहां रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजायाफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूं, वहीं जाता हूं मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था, और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था, और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा, यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई।
जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं, उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूद सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आपने सिनेमा के बारे में तो बेहद कुछ सुना है और आप इसे जीते भी हैं, इससे मनोरंजन भी करते हैं, है ना। सिनेमा नाम सुनते ही हमारे सामने कई तस्वीरें आने लगती है, बड़ी स्क्रीन, रंग बिरंगी रोशनी, कलाकारों की शानदार अदाकारी, कहानी, संगीत और वो पल जब हम फिल्म देखते हुए कभी हंसते हैं, कभी भावुक होते हैं और कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिनेमा हमारे समाज का एक आईना भी है। समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, सिनेमा उन्हें पर्दे पर दिखाता है और कई बार सिनेमा खुद भी लोगों को किसी मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित भी करता है। यही वजह है कि सिनेमा और सामाजिक बदलाव का रिश्ता काफ़ी गहरा है। अगर हम पुराने दौर की फिल्मों को देखें तो उस समय की फिल्मों में समाज, परिवार, रिश्ते और उस दौर की समस्याओं की झलक दिखाई देती थी। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा और ग्रामीण जीवन जैसे विषय फिल्मों की कहानियों का हिस्सा बने। लेकिन फिर समय बदला, समाज बदला और फिल्मों के विषय भी बदलते गए। दोस्तों, आज की फिल्मों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल दुनिया, युवाओं की चुनौतियां, लैंगिक समानता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर भी चर्चा देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, सिनेमा का प्रभाव सिर्फ फिल्म खत्म होने तक नहीं रहता। कई बार किसी फिल्म का कोई किरदार, संवाद या कहानी हमारे मन में लंबे समय तक रहती है, हम उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों और परिवार के साथ अपनी राय साझा करते हैं और कभी कभी किसी सामाजिक मुद्दे को एक नज़रिए से देखने लगते हैं।

यही सिनेमा की ताकत है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी ज़रूरी है, क्या सिनेमा हमेशा समाज की सही तस्वीर दिखाता है? इसका जवाब थोड़ा संतुलित है दोस्तों। सिनेमा एक रचनात्मक माध्यम है, इसमें कहानी को रोचक बनाने के लिए कल्पना, नाटकीयता और मनोरंजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हर फिल्म को समाज की वास्तविक तस्वीर नहीं माना जा सकता। लेकिन जब कोई फिल्म किसी सामाजिक विषय को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ सामने रखती है तो वो दर्शकों के बीच संवाद शुरू करने का माध्यम जरूर बन सकती है। और खासकर युवाओं पर सिनेमा का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। युवा फिल्में देखते हैं, कलाकारों और किरदारों से जुड़ते हैं और उनके विचारों पर चर्चा भी करते हैं, और कई बार फिल्मों में दिखाई गई नई सोच से वो प्रभावित भी होते हैं। लेकिन यहाँ हमारी जिम्मेदारी भी है दोस्तों, हमें फिल्म में दिखाई गई हर बात को वास्तविक जीवन का नियम मानने के बजाय उसे समझने और परखने की आदत रखनी चाहिए। मनोरंजन का आनंद लेते हुए ये देखना भी ज़रूरी है कि फिल्म हमें क्या संदेश दे रही है और वो संदेश हमारे समाज के लिए किस तरह उपयोगी या फिर प्रासंगिक है। फ्रेंड्स, सिनेमा सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी ही नहीं है, ये हमारे समय, समाज और सोच की कहानी भी हो सकती है। एक समय था जब फिल्मों में दिखाई जाने वाली कई बातें समाज के लिए नई थी, धीरे धीरे वही बातें चर्चा का हिस्सा बनी और सामाजिक सोच में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने सिनेमा की पहुँच को और बढ़ा दिया है। अब कोई फिल्म सिर्फ सिनेमा घर तक सीमित नहीं रहती, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से वो देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग उम्र के लोगों तक भी पहुंच सकती है, इसलिए आज फिल्मकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। फ्रेंड्स, किसी सामाजिक मुद्दे को पर्दे पर दिखाते समय संवेदनशीलता, तथ्य और जिम्मेदारी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा का असर बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँच सकता है और दर्शकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अच्छी कहानी का आनंद लें और नए विचारों को समझें, लेकिन अपनी सोच को हमेशा खुला और विवेकपूर्ण रखना चाहिए दोस्तों। तो सिनेमा और सामाजिक बदलाव को अगर एक वाक्य में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि सिनेमा समाज को दिखाता भी है और समाज से संवाद भी करता है। कभी वो हमारी पुरानी सोच को पर्दे पर सामने लाता है तो कभी नए सवाल पूछता है, और कभी हमें ये सोचने का मौका भी देता है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि वर्षों बाद भी कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रहती बल्कि अपने समय की याद और समाज की सोच का हिस्सा बन जाती है। तो अगले बार जब आप कोई भी फिल्म देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कहानी कैसी थी या कलाकारों ने कैसा अभिनय किया, एक बार ये भी सोचिए कि ये फिल्म हमारे समाज के बारे में क्या कह रही है, क्या ये किसी सवाल को सामने ला रही है और क्या इसे देखने के बाद हमारी सोच में कोई नया सवाल पैदा हुआ। क्योंकि सिनेमा की असली खूबसूरती सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीरों में नहीं है दोस्तों, बल्कि उन विचारों में भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद हमारे मन में चलते रहते हैं। तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो दोस्तों, बात करते हैं अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसने मनोरंजन देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दिया है, और वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। फ्रेंड्स, एक समय था जब मनोरंजन के लिए हमें टेलीविज़न पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम के समय का इंतज़ार करना पड़ता था, या फिर फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर जाना पड़ता था। लेकिन आज मोबाइल उठाइए, इंटरनेट से जुड़िए और अपने पसंद की फिल्म, वेब सीरीज़ या डॉक्यूमेंट्री कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। यही सुविधा OTT प्लेटफॉर्म को युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। फ्रेंड्स, OTT यानी ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से फिल्में, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री और अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। आज युवाओं के पास मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प हैं, और सबसे खास बात है इसकी चॉइस और सुविधा। अगर किसी युवा को फिल्में पसंद है तो उसके लिए विकल्प है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या जानकारी से

जुड़ा कंटेंट देखना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत कुछ इस पर उपलब्ध है और अलग अलग भाषाओं और देशों का कंटेंट भी आसानी से देखा जा सकता है। इससे युवाओं को दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। दोस्तों, OTT का एक सकारात्मक प्रभाव ये भी है कि अब मनोरंजन के साथ साथ सीखने के अवसर भी बढ़े हैं। इतिहास, विज्ञान, प्रकृति, यात्रा, कला और समाज जैसे विषयों पर कई उपयोगी डॉक्यूमेंट्री और कार्यक्रम OTT पर उपलब्ध होते हैं और विद्यार्थी भी अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक और जानकारीपूर्ण सामग्री खोज सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, युववाणी आकाशवाणी का नागौर का चिरमी चैनल भी जो है OTT वेव्स OTT पर अवेलेबल है। दोस्तों, हर सुविधा के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। OTT पर कंटेंट की भरमार है और यही चीज़ कभी कभी युवाओं के लिए परेशानी बन सकती है। एक एपिसोड खत्म होने के बाद अगला एपिसोड अपने आप शुरू हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब 2 घंटे में बदल गया। और यहीं से शुरू होती है बिंज वॉचिंग, यानी लगातार कई एपिसोड देखते चले जाना। इसका असर पढ़ाई, नींद, समय प्रबंधन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है दोस्तों, खासकर तब जब मनोरंजन के लिए तय किया गया समय धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बन जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कंटेंट का चुनाव। OTT पर हर उम्र और हर रुचि के लोगों के लिए अलग अलग तरह की सामग्री उपलब्ध होती है, इसलिए युवाओं के लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि हर लोकप्रिय कंटेंट उनके लिए उपयोगी या उपयुक्त हो ये ज़रूरी नहीं। दोस्तों, हमें अपनी उम्र, रुचि और ज़रूरत के अनुसार कंटेंट चुनना चाहिए और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एज रेटिंग और कंटेंट वार्निंग्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। OTT ने एक और बदलाव किया है, इसने युवाओं को नई कहानियों और नए कलाकारों तक पहुंच दी है। पहले मनोरंजन के कुछ ही माध्यम थे, लेकिन अब छोटे शहरों और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां भी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकती है। इससे नए विषयों और नए दृष्टिकोणों को भी जगह मिलती है। तो सवाल ये नहीं है कि OTT अच्छा है या बुरा, असली बात यह है दोस्तों कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर हम OTT को मनोरंजन, जानकारी और नई चीज़ें सीखने के माध्यम के रूप में संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमारे लिए एक उपयोगी डिजिटल माध्यम बन सकता है। लेकिन अगर स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण ही नहीं रहे तो यही सुविधा हमारी दिनचर्या को प्रभावित भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप OTT पर कुछ देखने बैठे तो एक छोटी सी बात याद रखना कि कंटेंट हम चुनेंगे, कंटेंट हमें नहीं। मनोरंजन ज़रूर कीजिए, नई कहानियाँ देखिए, नई चीज़ें सीखिए, लेकिन अपने समय की कमान अपने हाथ में रखिए। तो इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले अरे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्क
0: कम ऑन रिया
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाता है। नॉट लिसनिंग टू यू,
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू,
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और बात करते हैं हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट सिनेमा की बातों की। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म देखने के बाद हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि फिल्म कैसी लगी, तो यहीं से शुरू होती है हमारी फिल्म समीक्षा। दोस्तों, आज हम सिनेमा की बातों में फिल्म समीक्षा के बारे में ही बात करने वाले हैं। आखिर किसी फिल्म को देखने के बाद

शानदार अभिनय के कारण यादगार बन जाता है। वहीं कभी कभी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद दर्शक किरदारों से जुड़ नहीं पाते। फिल्म समीक्षा में निर्देशन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। निर्देशक कहानी को किस तरह पर्दे पर प्रस्तुत करता है, कैमरे का इस्तेमाल कैसे होता है और दृश्यों की गति कैसी है और कहानी को किस अंदाज में आगे बढ़ाया जाता है, ये सभी चीज़ें फिल्म के अनुभव को प्रभावित करती है। और दोस्तों, सिनेमा की बात हो और संगीत का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के भाव को और मजबूत कर सकते हैं। कभी कोई गीत फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे साथ बना रहता है, तो कभी किसी दृश्य का बैकग्राउंड म्यूजिक उस पल की भावना को और गहरा कर देता है। अब बात आती है फिल्म के संदेश की। हर फिल्म कोई ना कोई सामाजिक संदेश दे, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ फिल्में केवल मनोरंजन के लिए होती है और कुछ हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर कोई फिल्म किसी सामाजिक मुद्दे, रिश्ते, संघर्ष या फिर युवा जीवन से जुड़े विषय को सामने रखती है, तो समीक्षा करते समय ये देखना भी दिलचस्प होता है कि फिल्म ने उस विषय को कितनी संवेदनशीलता और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हालांकि फिल्म समीक्षा का मतलब सिर्फ कमियां निकालना ही नहीं होता, एक अच्छी समीक्षा में फिल्म की खूबियों और सीमाओं दोनों पर बात होनी चाहिए। किसी फिल्म को पसंद करना या ना करना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। किसी दर्शक को जो दृश्य शानदार लगे, हो सकता है दूसरे दर्शक को वही सामान्य लगे। इसलिए समीक्षा में अपनी राय के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि वो राय किन पहलुओं पर आधारित है। और आज के समय में फिल्म समीक्षा का तरीका भी बदल गया है दोस्तों। पहले लोग अखबार या पत्रिकाओं में फिल्म समीक्षाएं पढ़ते थे, अब सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के माध्यम से दर्शक फिल्म देखने के तुरंत बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। किसी फिल्म का ट्रेलर, गाना या छोटा सा दृश्य भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है दोस्तों, दूसरों की समीक्षा पढ़कर अपनी राय बनाने के बजाय फिल्म को अपनी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि सिनेमा का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब कोई आप फिल्म देखें तो सिर्फ ये मत कहिए कि फिल्म अच्छी थी या फिल्म खराब थी। थोड़ा रुकिए और सोचिए कि कहानी कैसी थी, कलाकारों का अभिनय कैसा लगा, निर्देशन कैसा था, संगीत ने कहानी को कितना प्रभावित किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, फिल्म देखने के बाद आपके मन में क्या रह गया। क्योंकि शायद यही एक अच्छी फिल्म की पहचान है। फिल्म खत्म हो जाए लेकिन उसकी कहानी और भावनाएं कुछ समय तक हमारे साथ बनी रहे। इसी के साथ जो है सिनेमा की बातों में हम जो है करते रहेंगे। सिनेमा देखते रहिए, कहानियों को महसूस कीजिए और अपनी राय बनाते समय अपनी नज़रिया भी याद रखिए। तो फिर से आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्रिटी सॉन्ग।

दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, सिनेमा की कुछ बातों का ध्यान रखिए और मनोरंजन कीजिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 में प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में और मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, जो होना है वो होकर रहेगा। जी हाँ, हम उसे टाल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। आप बेवजह घबराया न करो, गलतियाँ तो सबसे होती है। आप खुद को इतना सताया न करो, नज़र लग जाती है खुशियों को भी। आप सबके सामने यूँ इतना ज़्यादा मुस्कुराया न करो, जिन्हें फुर्सत नहीं अपनी ज़िंदगी से उन्हें अपनी परेशानियाँ बताया न करो। और जो जानबूझकर आपको तकलीफ़ दे, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाया न करो। जी हाँ सखियों, ये बात मेरी सभी सखियों के लिए है कि ज़्यादा टेंशन नहीं करना। ये जीवन बहुत ही छोटा है और इसे बहुत ही सुंदरता से हमें जीना है। जीवन में परेशानियाँ आना बहुत ही आम बात है, आनी भी चाहिए, उससे हम मजबूत बनते हैं। लेकिन छोटी छोटी या कभी कभी बड़ी परेशानियों से हम घबरा जाते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने दिल को, अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाइए कि किसी के कुछ कहने से या करने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना रिस्पेक्ट करें, अगर आप खुद अपना सम्मान करेंगे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। वो कहते भी तो है ना, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। तो ये बात बिल्कुल सच है। आपको सबसे पहले खुद का रिस्पेक्ट करना होगा, खुद पे ध्यान देना होगा, खुद की ग्रूमिंग करनी होगी और खुद को बहुत खास समझना होगा। और वैसे भी मेरी सखियाँ, मेरी बहनें बहुत खास है भी, बहुत यूनिक होती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के पास वो सारी क्षमताएं हैं जो जनरली जो ईश्वर ने एक प्राणी होने के नाते दी है, वो महिलाओं में विशेष सारी खूबियां हैं। तो चलिए सखियों, आज के इस कार्यक्रम महिला जगत की शुरुआत करते हैं आज की बात से। आज की बात में हमारा विषय है विश्व जल निगरानी दिवस। जी हाँ सखियों, आज दुनिया भर में विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में अमेरिका के क्लीन वाटर कोऑर्डिनेशन द्वारा की गई थी। इसका अगर मुख्य उद्देश्य हम जानना चाहें तो वो है कि जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी में आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व भर के लगभग 150 से अधिक देश इस दिन जल स्रोतों की जांच और संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सखियों, वर्ष 2003 में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वैश्विक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम को बाद में विश्व जल निगरानी चुनौती और उसके बाद अर्थ इको जल चुनौती नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए सशक्त बनाकर दुनिया भर में जल संसाधनों के संरक्षण में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना था। इसके साथ ही सखियों, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य इस विषय पर यह है कि अगर जस्ट इमेजिन, अगर हमारे घर पर कोई कचरा डाले तो हमें कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा और हमारा मन करेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि उन्हें इस चीज़ का सबक मिले। तो वो जो जानवर है, जो जलीय जीव है, जो उस जल में रहते हैं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, उस जल में कचरा डालते हैं, उसे गंदा करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं, तो सोचिए उन जलीय जीवों का क्या हाल होता होगा। वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, वो बोलकर चिल्ला नहीं सकते, उन्हें गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि वो उनका घर है। जैसे हमारा घर ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे घरों में सुरक्षित हैं, वैसे ही वो जल के जीव हैं, वो जल में सुरक्षित रहना चाहते हैं और हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं और कई बार उनकी जान भी नौबत आ जाती है। तो कोशिश करें कि उन जलीय जीवों का जीवन हम संकट में न डालें और पानी में किसी भी तरह की कोई भी जल स्रोत है, नदी, नाला, कोई समुद्र, कोई आपके पास नाड़ी, कुछ भी हो, आपके गांव, आपके शहर, आपके भारत देश में कहीं पे भी हो, तो उसे कोशिश करें कि वहाँ कोई भी तरह की आप गंदगी न फैलाएं। तो ये थी आज के कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा हमारी आज की बात में। अब आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ रुकना होगा इस कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: You have tuned at 103.7 megahertz. This is Akashvani Nagaon's Chirmi channel and you are listening your favorite program Mahila Jagat. So, kya aaj ke karyakram mein main ek baar fir se aap sabhi ka abhinandan karti hoon aur charcha karna chahungi aaj ek behad khaas aur antarrashtriya divas par jo hai antarrashtriya saman vetan divas. Ji haan sakhiyo, antarrashtriya saman vetan divas हर साल आज ही के दिन यानी कि 18 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जाने विश्व भर में मनाए जा रहे इस इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में कुछ खास बातों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सखियों, इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि समान वैल्यू के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए, साथ ही कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा वेतन में मौजूद अंतर जो कि जेंडर पे गैप होता है उसके प्रति दुनिया भर में जागरूकता को बढ़ाना है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2019 में एक प्रस्ताव अपनाकर 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित किया था और इस दिवस को पहली बार वर्ष 2020 में मनाया गया था। कुछ स्तरों पर ऐसे आंकड़े भी सामने आए जहां ये पता चला कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस असमानता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी हमारे कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा आज इस खास दिवस के मौके पर। अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की एक बेहद खूबसूरत दुनिया में और सुनवाना चाहते हैं एक सुरीला गीत जो हमने चुना है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, और इसे आवाजें दी हैं जावेद अली और साहिर अली बागा ने।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत। सखियो, एक बात कहना चाहूंगी, उसके बाद हमारा अगला जो सेगमेंट है उस पर चर्चा करेंगे। सखियो, बहुत सारी उलझनों का जवाब सिर्फ यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ और वो अपनी जगह सही है। कभी कभी होता है ना हमारे जीवन में कि हमसे कोई डिस्कस करने लग जाते हैं या जानबूझकर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत एटिकेट रखता है, बहुत सम्मान करता है सभी का, ये हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, इसको कुछ भी सुना दिया जाए। तो ऐसे व्यक्तियों से डिस्कशन या फिर किसी तरह का तर्क वितर्क करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस ये मन में सोच लीजिए, उन्हें भी कहने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति, वो उनकी सोच है, वो उनके विचार है, वो उनका व्यवहार है जो उनके साथ रहेगा, और आपके विचार, आपका व्यवहार आपके साथ रहेगा, तो वो अपनी जगह सही और आप अपनी जगह सही। तो चलिए अब कार्यक्रम में हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो है आज की हमारी चर्चा, साइबर क्राइम, सजगता जरूरी। जी हाँ, एक करंट टॉपिक हमने आप सभी सखियों के लिए सेलेक्ट किया है। सखियों, साइबर क्राइम से सुरक्षा के लिए जागरूकता और सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है। डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में, जहां इंटरनेट ने हमारे काम बहुत आसान कर दिए हैं, वहीं साइबर अपराधियों ने अपने जाल भी फैला लिए हैं। थोड़ा सा लालच या फिर एक छोटी सी हमारी लापरवाही हमें बहुत बड़े आर्थिक और मानसिक तनाव में डाल सकती है। चलिए हम खुद को साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या काम करके सजग और सतर्क रह सकते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर मैं कहना चाहूं तो वो होगा वित्तीय धोखाधड़ी। जी हाँ सखियों, लॉटरी जीतने या फिर बिजली बिल कटने या फिर बैंक अकाउंट ब्लॉक होने के नाम पर आने वाले जो फर्जी कॉल्स होते हैं और मैसेज होते हैं, उनसे बचें। हमेशा याद रखें कि कोई भी बैंक या फिर ऑफिस के अधिकारी आपका OTP, आपका पिन या फिर CVV नंबर नहीं मांगते। अगर ऐसा कोई करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ये एक फर्जी फ्रॉड कॉल हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिशिंग लिंक्स। जी हाँ सखियों, ईमेल्स, व्हाट्सएप या SMS पे मिलने वाले अनजान लिंक्स पर कभी भी क्लिक करके ओपन ना करें, क्योंकि ये लिंक्स आपको फर्जी वेबसाइट्स पर ले जाकर आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर फ्रॉड। जी हाँ, यहाँ पर भी फ्रॉड होता है। कैसे? गूगल पर किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते समय बेहद सावधान रहें, क्योंकि सर्च रिजल्ट में फर्जी नंबर भी हो सकते हैं। हमेशा कंपनी की ऑथेंटिक वेबसाइट से ही नंबर कलेक्ट करें और फिर बात करें। अपनी निजी तस्वीरें या संवेदनशील डेटा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करें, क्योंकि अपराधी इसका मिसयूज कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से सजग रहने के जरूरी उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जी हाँ श्रोताओं, मजबूत और सभी अकाउंट्स का अलग अलग पासवर्ड रखें। मैंने कई लोगों को देखा है और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, तो चलिए आज मेरे पास एक अच्छा अवसर है इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताने का, कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर और न जाने क्या क्या आप सोशल मीडिया में आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप सभी के अलग अलग पासवर्ड्स बनाइए, ताकि अगर मान लेते एक जगह हैक होता है तो आपके बाकी जो भी अकाउंट्स हैं वो सेफ रह जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरी अकाउंट्स में 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी फ्रॉड अलर्ट आपके पास हो तो आपको ये पता चल जाए और अगला आसानी से आपको चीट न कर सके। इसके अलावा हमेशा अपने गैजेट्स, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका मोबाइल, आपका सेलफोन, ये हो सकता है आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप या जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। उससे क्या होगा कि जो भी ऐसे फ्रॉड लिंक्स होते हैं या ऐसा कोई भी वायरस वगैरह होता है, वो सब वहाँ से डिलीट हो जाते हैं और आप एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। श्रोताओं, साइबर अपराध होने पर हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं हमारे आसपास के समाज में कई

हर ऐसा छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए या अगर शिकार हम खुद साइबर ठगी के हो जाएं, तो हमें सबसे पहले तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जो है 1930। उस पे कॉल करके जितना जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की जो आधिकारिक पोर्टल पे एक वेबसाइट है, उस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसका नाम है cybercrime.gov.in। तो ये थी एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे चर्चा, जो आज के समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है और काफ़ी लोग इस साइबर ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। ये हमारी चर्चा थी आप सभी के लिए। अब एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, और जिसे हमने लिया है फिल्म खट्टा मीठा से, और जिसे गाया है KK और सुनिधि चौहान ने।

आप सुन रहे हैं चिरमी चैनल का एक बेहद खूबसूरत और महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत। सिखियो, आज के हमारे कार्यक्रम का अंतिम सेगमेंट है ब्यूटी टिप्स। जी हाँ, डैंड्रफ की समस्या और समाधान। सिखियो, डैंड्रफ यानी कि रूसी सिर की त्वचा की एक आम समस्या है, जिसमें स्कैल्प से सफेद पपड़ी निकलने लगती है और खुजली होने लगती है। अब इस डैंड्रफ का क्या कारण हो सकता है? सिखियो, रूखी त्वचा स्पेशली सर्दियों में होती है। सिर की त्वचा पर यीस्ट या फंगस का जो बढ़ना होता है, इस वजह से भी हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तेलीय स्कल्प जो होती है या एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है, और हमारे अगर सिर में कोई, हमारे बालों में सिर में कोई गंदगी जमा हो जाती है, तो उससे भी ये डैंड्रफ बन सकता है। इसके अलावा केमिकल युक्त शैम्पू या फिर कलर से भी एलर्जी हो जाती है। सिखियो, डैंड्रफ की समस्या का समाधान और उपाय क्या हो सकता है, आइए जाने। टी ट्री ऑयल, जी हाँ, एंटी फंगल गुणों के कारण इस तेल को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा नारियल तेल और नींबू, जी हाँ, हल्के से गर्म नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर स्कैल्प की अच्छी मालिश करना चाहिए। एलोवेरा जेल, इससे सिर में खुजली कम होती है और रूखेपन से भी आराम मिलता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पू कंडीशनर अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन के हिसाब से या फिर कभी डॉक्टर की सलाह भी लेकर आप शैम्पू यूज़ कर सकती है जो आपके स्किन को सूट करे, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी, जिसमें नीम ऑयल एड हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा सिखियो, जीवन शैली में बदलाव करके, जैसे कि गर्म पानी से बाल धोने से बचना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए, संतुलित आहार ले, खूब सारा पानी पिए और सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार बाल जरूर धोएं, उससे हमारी स्किन एकदम क्लीन रहती है। डायरेक्ट सनलाइट भी हमारे बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचाकर डैंड्रफ बना सकती है। इसके अलावा जब भी आप स्विमिंग करें तो उसमें स्विमिंग कैप जरूर यूज करें, और दूसरों की कंघी, जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरे का कंघा, तौलिया या फिर तकिए का इस्तेमाल भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी डैंड्रफ की समस्या का कारण हो सकता है। तो ये थी हमारी चर्चा ब्यूटी टिप्स में। अब एक बार फिर आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की बेहद खूबसूरत दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म लव आजकल से नीरज श्रीधर सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
3: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से

0: चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 में अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म चित चोर का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ यशुदास की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म कटी पतंग से आवाज किशोर कुमार की है, संगीत आरडी बर्मन का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से। संगीत ओपी नायर का है और गीत लिखा है SH बिहारी ने।

साथियों, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्यारे से नगमे। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:20 में प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें हमारे आज के कलाकार है हरिनारायण शास्त्री। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर में हरिनारायण शास्त्री की गाए लोक भजन।

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आपने सुना हरिनारायण शास्त्री के गाए लोक भजन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 में अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: वाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर और उदयपुर में भी मेलों का आयोजन। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की। प्रदेश में 26 नगरीय निकायों के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के महापौर। और नए मौसमी तंत्र के असर से राज्य के कई हिस्से बारिश से तरबतर। कल 25 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये नियुक्ति पत्र विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को दिए जाएंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले रोजगार मेले में 51 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रोजगार मेले युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के साथ ही देश की विकास यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दर्शाते हैं। अब तक हुए 19 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। एनजीटी की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के और जिला अदालतों के जज शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 17 देशों के जज और न्यायिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे पोषण माह को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान आहार विविधता, प्रोटीन सेवन के साथ ताजा पके गर्म भोजन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं की उपनिदेशक प्रियंका शर्मा ने बताया कि पोषण माह के तहत रोजाना विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नई नई व्यंजन विधियों के माध्यम से बेहतर पोषण और प्रोटीन सेवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
2: तिल हैं तो तिल के लड्डू को कैसे

0: यूज करना है या बाजरे का भी केक बना सकते हैं बाजरे के बिस्कुट्स बना सकते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो रेसिपीज हैं मूंगफली का कैसे विविध तरह से यूज कर सकते हैं है, उसको कैसे पाउडर वगैरह बना के जो जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है या उसके एज स्टेटस के हिसाब से उसको दे सकते हैं इस संदर्भ में हम आम लोगों के बीच में जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि वो हेल्दी खाएं और सेंसिबल खाएं जिससे उनकी जो हेल्थ है और न्यूट्रिशनल पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ हों।
1: केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। महीने में 10 टन से अधिक चीनी का उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए ये स्टॉक लिमिट बढ़ाई गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार से खरीदी जाने वाली चीनी के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट बरकरार रखी है। सरकार ने ये निर्णय चीनी के प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ परामर्श के बाद लिया है। मंत्रालय ने कहा कि खुदरा चीनी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से लगभग 10% तक गिर गई हैं। मंत्रालय ने व्यापारियों से कटौती का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 26 नगरीय निकायों के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसके साथ ही अब महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद को लेकर भी तस्वीर साफ होती जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष निर्विरोध बनाने में कामयाबी हासिल की है। भरतपुर में अनुराधा सिंह महापौर बनेंगी, वहीं जसवंत कंवर भीलवाड़ा नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। उधर धौलपुर नगर परिषद सभापति का चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुआ। गिरीश गर्ग को सभापति घोषित किया गया। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों और सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। कल दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 सितंबर तक नाम वापसी हो सकेगी। 25 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा, वहीं उपाध्यक्ष पद का चुनाव 26 सितंबर को होगा। 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद रखी गई है, जो भारत की समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के साथ भविष्य की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों के विजन को दर्शाती है। आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकार्यता दिलाने और इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी आयुष मंत्रालय की ओर से व्यापक रूप से किए जा रहे हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आकाशवाणी समाचार जयपुर को बताया कि आयुर्वेद दिवस से पहले 100 दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम रखा गया, जिसके माध्यम से लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपनाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन शैली अपनाने को कहा।
2: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, और परिवार, समाज, देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें और बाकियों को भी स्वस्थ रह सकें। तो मेरा आपके माध्यम से यही सभी को संदेश है कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो कि शाश्वत हैं, उनका पालन करें। हम अपनी जो दिनचर्या है, यानी लाइफस्टाइल है, अपना जो फूड हैबिट्स हैं, डाइटेटिक्स है, उसको हम आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद सम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और देश को स्वस्थ बना सकते हैं।
1: भीलवाड़ा जिले के बिगोद क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। बिगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर से हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति और उनके पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार

0: अलग मौके से फरार हो गया। और अब मौसम। राज्य में नए मौसमी तंत्र के असर से कई हिस्से तरबतर हैं। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और राजधानी जयपुर में भी बरसात का दौर चला। पाली जिले के सांडेराव और देसूरी सहित आसपास के इलाकों में आज कुछ देर बारिश हुई। उधर सलूम्बर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल देर रात गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी रुक रुक कर जारी रहा।
1: गुरुवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी दिन भर जारी रहा। जिले में सबसे ज्यादा बारिश सरड़ा में दर्ज की गई, जबकि सेमबारी, जल्लारा, लसाड़िया और सलूम्बर क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जल्लारा क्षेत्र में खोलड़ी और अमलोदा पुल के पास नदी में पानी की आवक भी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पुलों को पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार, सलूम्बर।
0: विभाग ने आज भी 28 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया है। वहीं कल 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झालावाड़ और जयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। बीकानेर संभाग में भी छुटपुट स्थानों पर बरसात के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं राज्य के अन्य भागों में 21 सितंबर से मॉनसून की विदाई की संभावना है। इस बीच मॉनसून के अंतिम दौर की बारिश से राज्य के बांधों में जलस्तर में सुधार आया है। जल स्रोत अब तक 60% से अधिक भर चुके हैं। कुल 693 में से 82 बांध लबालब हैं, वहीं 409 आंशिक रूप से भरे हैं। लोक देवता रामदेव भादवा मेले के लिए देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। रामदेवरा मार्ग पर पदयात्रियों के जत्थे और ध्वजाएं नजर आ रही हैं। वहीं कई जगह भक्त घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते देखे जा सकते हैं। श्रद्धालु जत्थों के वातावरण उत्साहजनक बना हुआ है। वहीं पाली में जसोल माता के अवतरण दिवस पर प्राचीन मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। मंदिर में महाआरती और भक्ति संध्या का भी आयोजन किया गया। उधर सलूम्बर में आज जयसमंद की पाल पर गवरी का मंचन किया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गवरी देखने पहुंचे। गवरी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला धार्मिक लोकनाट्य और उत्सव है। इसमें नृत्य, संगीत, अभिनय और कहानी का मेलजोल देखने को मिलता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर और उदयपुर में भी मेलों का आयोजन। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की। प्रदेश में 26 नगरीय निकायों के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के महापौर। और नए मौसमी तंत्र के असर से राज्य के कई हिस्से बारिश से तरबतर। कल 25 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में बीते दिनों नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए। जल प्रबंधन और किसानों से जुड़े कामों के साथ विकसित भारत जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी हुए। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले के 8 स्थानीय निकायों के 290 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने 133, कांग्रेस ने 91 और भाजपा ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की। माकपा के 2 प्रत्याशी विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए 15 और 16 सितंबर को नामांकन हुए। 8 निकायों में कुल 29 अभ्यर्थियों ने 41 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
2: जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विकसित भारत जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान रक्तदान शिविरों के आयोजन होंगे, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए स्कूलों के विद्यार्थियों को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ टाउन के महात्मा गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें

संख्या में आमजन खासतौर पर युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जिला और खंड स्तर पर 500 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रक्तदान की शपथ भी ली। जल अर्पण कार्यक्रम के तहत जिले के 70 गांवों में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जल शपथ और जल संरक्षण रैली भी हुई। चंडीगढ़ में हुई भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB की बैठक में इंदिरा गांधी नहर में सितंबर माह के दौरान 3 में से 1 समूह का रेगुलेशन यथावत रखने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर तक बांधों की जलस्तर के आधार पर राज्यों के हिस्से का फिर से निर्धारण किया जाएगा। कृषि विभाग ने उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री के लिए DBT POS एप्लीकेशन का नया वर्जन लागू किया है। अब किसानों को फार्मर आईडी के जरिए सब्सिडी वाला

आहार में शामिल करने की जानकारी दी गई। किसानों को मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बारे में बताया गया। समारोह पूर्वक मनाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के NMPG कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय समारोह हुआ। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में वीरांगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ टाउन के सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारे में सालाना जोड़ मेला आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। वहीं गोगा मेड़ी में नवमी के अवसर पर मुख्य मेले में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गोगा पीर के दर्शन किए। मेला क्षेत्र में पीने के पानी, चिकित्सा और

0: कोहला वनखंड की लवकुश वाटिका में पौधरोपण किया गया। मां यशोदा के नाम अभियान के तहत 501 पौधे लगाए गए। पौधों का जियो टैग कर हरियालो ऐप और मेरी लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया गया। वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कई जगह शिक्षकों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम रखे गए। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लागन वाला 20वां रोजगार मेला में 51,000 नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात वर्चुअल तरीकों से पहला जयपुर और उदयपुर में आई कार्यक्रम। केंद्र सरकार थोक ग्राहकां सारू शक्कर भेड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बधार 30 दिन की नी। प्रदेश में 26 नगरीय निकाया में प्रमुख निर्विरोध चुनीचिया। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा रा महापौर। और नुआ मौसमी तंत्र रा असरू राज्य रा कई हलका में चोखी बिरखा। काल 25 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राख्या जावन वाला 20वां रोजगार मेला माए 51,000 नौजवाना ने न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लागन रा कागजात वर्चुअल तरीकाओं से पहला। आमाए राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस मौके मारो कार्यक्रम में मौजूद जनता ने संबोधित करन रो कार्यक्रम है। देश भर में 45 ठोणा रोजगार मेला लगाया जावेला। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेला लगेला। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगाया जावन वाला रोजगार मेला में 51 नौजवानों ने नियुक्ति पत्र सौंपेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात देवेला। हाल ताई भया 19 रोजगार मेला रे जरिए 12,00,000 बत्ता मोटियारा ने न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठना में नौकरियां दे दी रीची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन रो उद्घाटन करण रो कार्यक्रम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT री ओर रख्या जावन वाला इन सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। दो दिन रा इन सम्मेलन में पर्यावरण रा जानकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रा जज शामिल भेला। इस आगे न्यारा न्यारा मंत्रालयों रा सचिव और आला अहलकार इनमें शिरकत करेला। 17 देशों रा जज और न्यायिक प्रतिनिधि इन कार्यक्रम में शामिल भेला। नवा राष्ट्रीय पोषण माह रा तहत प्रदेश में न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी मुद्दा मत है 8 अक्टूबर ताई मनाया जा रहा पोषण माह रे दौरान खान पीन री विविधता, प्रोटीन सेवन सागे ताजा पकौड़ा, गर्म भोजन रा महत्व रे बारा माय जाग जगाई जा रही है। समेकित बाल विकास सेवा री उपनिदेशक प्रियंका शर्मा बतायो के पोषण माह रा तहत रोजीना न्यारा न्यारा मुद्दा माथे कार्यक्रम राखर लोगां ने व्यंजन बनावन रा नुआ नुआ तरीका रे जरिए खान पीन माए बेहतर पोषण और प्रोटीन काम लेवन सारू सीख दी जा रही है।
2: तिल है तो तिल के लड्डू को कैसे यूज करना है, या बाजरे का भी केक बना सकते हैं, बाजरे के बिस्कुट्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो रेसिपीज हैं, मूंगफली का कैसे विविध तरह से यूज कर सकते हैं, है उसको कैसे पाउडर वगैरह बना के जो जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है या उसके एज स्टेटस के हिसाब से उसको दे सकते हैं। इस संदर्भ में हम आम लोगों के बीच में जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि वो हेल्दी खाएं और सेंसिबल खाएं, जिससे उनकी जो हेल्थ है और न्यूट्रिशनल पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ हों।
1: केंद्र सरकार थोक ग्राहकां सारू शक्कर भेड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बधार 30 दिन करती नी है। महीना में 10 टन 32 शक्कर काम लेवन वाला कारखाना सारू आ स्टॉक लिमिट बधाई ची है।

0: है। उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खुला बाजार और खरीदी वाले शक्कर सारू 15 दिन री स्टॉक सीमा बरकरार रखी है। मंत्रालय रे मुजब खुदरा बाजार में शक्कर रो मोल करीब 10% उतर क्यों है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज चालू माली साल सारू भारत री वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान ने 6.7% करती नो है। एजेंसी रे मुजब ओ पश्चिम एशिया में लड़ाई रे कारण उपजा हालात बीचे भारत री माली व्यवस्था री मजबूती ने बतावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश राज 26 नगरीय निकायों में मुखिया निर्विरोध चुनी चिया है। इन बीचे भारतीय जनता पार्टी भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर निर्विरोध बनावन में कामयाबी हासिल कीनी है। भरतपुर में अनुराधा सिंह जबकि भीलवाड़ा में जसवंत कंवर नगर निगम री महापौर चुनी ची है। दूजिकानी धौलपुर नगर परिषद में गिरीश गर्ग रे निर्विरोध सभापति बनवा रो ऐलान करी चियो है। इ बीचे जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम रा महापौर और सुकेत नगर पालिका रा अध्यक्ष रा चुनाव सारू आज पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। नाम पाना काल दोपहर 3 बजे ताई दाखिल करया जा सकेला। 21 सितम्बर ने पर्चा री जांच करी जावेला और 22 सितम्बर ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 25 सितंबर ने अध्यक्ष जदके 26 सितंबर ने उपाध्यक्ष ओहदारा चुनाव सारू वोट पड़ेला। 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर ने मनायो जावेला। इनरो ई साल रो मुद्दो स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद राखी चियो है। आयुर्वेद ने दुनिया भर में इलाज रो तरीको मनावन और ई हलका में अनुसंधान और नवाचार न बढ़ावो देवन री कोशिशां आयुष मंत्रालय री ओरों करी जा रही है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो कि आयुर्वेद दिवसों 100 दिन पहली रो काउंटडाउन कार्यक्रम राखी जियो जिनमें लोगों ने इलाज रा परंपरागत तरीका आयुर्वेद ने अपनावन री जानकारी दी री जी।
1: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, और परिवार समाज देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें और बाकियों को भी स्वस्थ रह सकें। तो मेरा आपके माध्यम से यही सभी को संदेश है कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो कि शाश्वत हैं उनका पालन करें। हम अपनी जो दिनचर्या है यानी लाइफस्टाइल है, अपना जो फूड हैबिट्स हैं, डाइटेटिक्स है, उसको हम आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद सम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और देश को स्वस्थ बना सकते हैं।
0: भीलवाड़ा जिला रा बिगोद हलका माए नेशनल हाईवे नंबर 758 माथे एक मोटरसाइकिल रे कार री फेंट माए आ जावणो मोटरसाइकिल सवार एक जोड़ा और वारा बेटा री मौत वेगी। बिगोद रा थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया बतायो के हादसा पाछे कार चलावन वालो मौका उ फरार फेंक्यो जिन्ना पुलिस हेर रही है। अरब मौसम राज्य में बना नुआ मौसमी तंत्र रा असरों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और राजधानी जयपुर में बरसात हुई है। पाली जिला रा सांडेराव और देसूरी समेत आरएसआरए रा हलका में आज थोड़ी देर ताई जोरदार में बरसियो। माना सलूम्बर खबर नवीस बतायो कि काल मोड़ी रात गरज और जोरदार बायरा सागे शुरू हुई बिरखा आज ही रुक रुक कर चलती रही।
2: गुरुवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी दिन भर जारी रहा। जिले में सबसे ज्यादा बारिश सरड़ा में दर्ज की गई, जबकि सेमबारी, जल्लारा, लसाड़िया और सलूम्बर क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जल्लारा क्षेत्र में खोलड़ी और अमलोदा पुल के पास नदी में पानी की आवक भी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पुलों को पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार
0: सलूम्बर। मौसम महकमो आज ही प्रदेश रा 28 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है, जबकि काल अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झालावाड़ और जयपुर समेत 25 जिला माए चोखे बिरखा रा आसार है। उदयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बारिश री संभावना है। बीकानेर संभाग में ही कठे कठे बरसात रा आसार है। इबिचे राज्य रा आतुणी हल्का माए कालू बिरखा माए कमी फिवन री शंका है, जदके राज्य रा दूजा हिस्सा माए 21 सितंबर नु चौमासा री बिरखा बंद फिवन री संभावना है। इस साल चौमासा रा आखिरी दौर माए फिर बिरखाऊ राज्य रा बंधा माए पानी रो लेवल थोड़ो ऊंचो आयो है। कूड़ा बावड़ी तलाव और बंधा हाल ताई 60% बत्ता भर गया है। राज्य रा 693 मायू 82 बंधा पूरा, जदके 409 थोड़ा घना भरिया है। लोक देवता बाबा रामदेव रा भादवा मेला माए शामिल हुए वणसारू आखा देश हूँ मोटी तादाद माए जात्रु रामदेव रा पूग रिया है। रामदेव रा गेला माथे पैदल जात्रुआ रा जत्था और ध्वजा नजर आ रही है। दूजी कानी सलुम्बर माए आज जय समंदरी पाल माथे गवरी स्वांग खेली जियो, जिन्ना देखन सारू बारिश रे बावजूद मोटी तादाद माए लोग पूग्या। इन माए नाच गान अभिनय और कहानी रो मेल जोल नजर आवे है। गवरी मेवाड़ हलका रो मोटो धार्मिक लोक नाट्य और उत्सव है। हर साल राखी रा त्योहार पाछे 40 दिन ताई उदयपुर राजसमंद और सलुम्बर जिला समेत न्यारा न्यारा हलका माए गवरी रा आयोजन रख्या जावे है। इन माए कलाकार ढोल मांदल री थाप माथे धार्मिक और पौराणिक प्रसंग सुनावे है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लागन वाला 20वां रोजगार मेला में 51,000 बत्ता नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात सौ पहला जयपुर और उदयपुर में आई कार्यक्रम। केंद्र सरकार थोक ग्राहक सारू शक्कर भेड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बधार 30 दिन कीनी। प्रदेश में 26 नगरीय निकायों में प्रमुख निर्विरोध चुनी चिया। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा रा महापौर। और नुआ मौसमी तंत्र रा असरू राज्य रा कई हलका माए चोखी बिरखा। काल 25 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाला सिंह भाया ने बाया ने और अपना नानक या टाबरिया ने आप रे प्रेम भैरा गणा हेत और गणा कोडसू राम राम। किसान भाया आप हम बात करा कि भाई देखो मौसम है जो को करवट लिवी है, यानी कि कई किसान भाई है जगह खेती के मायने लागोड़ा है कि भाई लावणी है जगह आयोडी है मैंने टेम हाथ ले यार घर गाल लिया, पर कहीं है कि बादला दिन चार पांच हुआ है कि आवेर जावे आवेर जावे, लेकिन वर्षा हा कोनी पहली तो और काल जे बिरखा उमड़ी और उमड़ पड़ी जे काली पड़ी बन बे तो वर्षी छांटा मोटी मोटी पड़ी और अपना किसान भाइयों के दौड़ भाग कराई दीवी। अरे कराई तो कराई बन देखो हावचेती तो किसान भाइयों ने राखनी पड़े जी बादला दिखा हा तो बे आप रे ओडोन करण को सामान जियान बात करा कि भाई कोई किसान भाई है जो बाजरी की सीटियाँ तोड़ में ली ही तो सीटियाँ ने देखो बीजणु तो खराब हो जाए इंड वास्ते ओडन वास्ते किसान भाई पहली सावचेती आ रखा करे भाई बंग है आप ओडन को सामान है जो कन्ने में जुड़ो ही रखा तो जी है दौड़ भाग तो हुई है दो चार छांटा लागी किसान भाइयों ने दौड़ भाग तो फुल करवाई और अब बिरका है जगह का लाड़ी लंबी चौड़ी भी हुई है किसान भाइयों देखा तो कई जगह गणी हैर कई जगह कम हैर कटी कटी हम दी है ही कोनी, पर आ है कि फायदा ली तो है कोनी क्यों क्योंकि जद बरसात की जरूरत थी तब देखो बरसात ही कोनी और भी कारण फसलें भी थोड़ी माड़ी है और चारा की बात करा हाँ तो देखो चारों ये मूंग हुई है क्योंकि चारों है भी कम लालीवार की पैदावार की बजाय अब की जगह पैदावार है अपने किसान भाइयों की कम हो रही है। तो देखो किसान भाइयों अपने तो मेहनत करनी है और मौसम तो यही है जो भगवान की कृपा है करें हो सके है। और आज रो आपनों विषय रखा हाँ पशुओं के मायने टीकाकरण। तो देखो किसान भैया पशुओं में टीकाकरण आप क्यों करा करें क्योंकि पशुओं के मायने कई तरह की खतरनाक और संक्रामक बीमारियां हो जाया करे तो बाहू बहन की बीमारियों बचाने के वास्ते आपने पशुओं के माते नियमित रूप में टीकाकरण सबों ज़्यादा असरदार और सबों आसान और सरल उपाय है। इन उपायों आपने जरूर करना चाहिए अपने पशु ने सार संभाल रखने वास्ते। तो देखो किसान भाई आपन ठाई एक पशुओं के मायने मुख्य बीमारियां कहीं कहीं या करे और बांको टीकाकरण आपने कद कराना चाहिए। खुरपका और मुंह पकाऊ अपना किसान भाई जका गाय भैंसीरा के पशुपालक है वे भली भांति इनका जानकार है कि आ गाय और भैंसियाँ के मायने साल में एक या दो बार आ जाया करे तो इनको हर छः महीना का अंतराल टीको लगाया जाया करे और सरकार इनका टीका लगाया करे है। तो बे टीका जद भी लागे आपने ध्यान रहा कर आपने जो पशु कंपाउंडर है बाने बुलाए या डॉक्टर है बाने बुलाए ये टीका बांगी निगरानी में आपन लगवाना है। दूसरो रोग वे गलगोंटू रोग और इन रोग को टीको आपने मई महीनों जो को लारे के बार गई हो दो महीना पहली भी महीना में आपने गाय और भैंस ने दिया करा हाँ तो भी टाइम आपन मई यानी साल में एक बार मई महीना में गलगोंटू रोकने वास्ते आपन वो टीको लगाना है। तीजी बीमारी है लंगड़ा बुखार, इनको टीको आपने मार्च और अप्रैल का महीना में लगाना चाहिए और अगर लगा जाए तो इन बीमारियों अपने पशु है जो को बच जाए। तीजो है ब्रुसेलोसिस यानी अगली बीमारी दुधारू पशुओं का जका मादा है मादा बछड़ा जका चार छः महीना की उम्र का हुए या छः नौ महीना की उम्र का हुए तो जियान पशुओं का मायने गर्भ ठहरियोड़ हुए तो गर्भ पात नहीं हो जाए यानी वो पाचो नहीं पड़ जाए बिना बचाने के वास्ते आप ब्रुसेलोसिस को टीको लगाया करें हाँ। और टीकाकरण का बहुत मोटा मोटा फायदा भी है तो मोटा फायदा देखो किसान भाई पहलो फायदा तो है तो वो है कि भाई रोगों सुरक्षा यानी पशुओं के मायने टीका लगाने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वे गंभीर रूप जकी बीमारियां या वायरस जनित बीमारी है बैक्टीरिया जनित बीमारी है आंकी चपेट में आवणु बचा करे है। दूसरा लाभ है कि उत्पादन में वृद्धि बोकियाँ वो इन प्रकार है किसान भैया कि आपनों पशु जद स्वस्थ रहसी तो वो की पूरी क्षमता उसी कि वो आपने दूध देसी और दूसरा प्रकार का भी अन्य उत्पादन जो आपने पशुओं में मिला करे यानी एक स्वस्थ पशु अपने आपन वायने एक अच्छी उत्पादन में वृद्धि दे सके है जिको अपना पशुपालका ने आर्थिक नुकसान नहीं सहना पड़े। और एक फायदा वो भी है कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा, मानव स्वास्थ्य की रक्षा किन प्रकार हुए किसान भाया क्योंकि कई बीमारियां जानवरों इंसान के मायने फैलिया करे है जखाने जूनोटिक रोग किया करे है तो वे भी बीमारियां आपा टीका के कारण रोक सका हाँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आप सुरक्षा कर सका हाँ। और इनमें आपन देखो कई सावधानियां भी रखनी पड़े यानी आप कहीं एक पशु है एक वर्ष टीका लगाया यार फ्री यानी आपने स्वस्थ पशु हमेशा ही है जो स्वस्थ पशु को ही टीका लगाएं यानी आ नहीं है कि पशु बीमार हुआ अब आप टीका लगावा वो गलत है यानी पशु जियान अत्यधिक कमजोर हुगो बीमार है या पशु तनाव में रहे है ना। तो एन काम बोटी को है जो असर कार को नहीं जाग रहे, तो वो लगाड़ो फालतू में ये ले जाते रहे। और टैगिंग लगन को भी ध्यान रखना चाहिए, यानी भी को डेटा है जो को कटापन संभाल रखना है, यानी सरकारी का जो अभियान है वहाँ अभियान के तहत देखो कई बार आप घर आवे के कान डाम टैग लगावे, तो किसान भाई वो टैग है जो को आपने लगाना जरूरी है। और भारत के देश के मायने देखो पशुधन बहुत लंबा चौड़ा एरिया में रखे है, और इनको ऐप है जो रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज भी आले करा कर है, और पशु बीमा भी आले हुए है, यानी कि आप पशु बीमा भी करवा सको, यानी पशु में कोई बीमारी आएगी गंभीर और मान लो पशु खत्म हो गो तो मंगला पशु बीमा योजना भी है, तो भी के तहत आप है जो फायदो ले सका। तो किसान भैया आप इतनी बात करी हाँ, अब एक सुना काम की बात।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: किसान भैया आ तो सुनी काम की बात, यानी अपना किसान भाई है जो को बुधवार के दिन कोई प्रकार की खेती बाड़ी संबंधित समस्या हुए या पशुपालन संबंधित समस्या हुए, यानी किसान जो भी काम पड़िया करे है, तो बिन प्रकार की जिन प्रकार रहा यानी आप रेडियो सुन और बिन बतावे कि भाई आज आपने इन विषय माते बात करने वाला विशेषज्ञ आवेला, तो बाने थे फोन कर रहा आपकी समस्या ले रहा जीरो सुख और आप पढ़ उत्तर है जो को बैठेगी थाने मिला है आयोडा विशेषज्ञों सीधी फोन के माते बातचीत हुई यार थाने मिला करे। तो देखो गांव गाँव तेरे भी जाया करा हाँ, अपन चौपाल में बैठ रहा अपना किसान भाइयों बात भी करिया करा और मिलिया भी करा, तो बाकी जगह बात करा हाँ भाई आप अपना किसान भाइयों ने सुनावा, तो कई का जगह तजुर्बा है भाई तजुर्बा अपने किसान भाइयों के काम आवे। तो किसान भाई मैं गियो गाँव डाडरिया कला और बटे मन मिल जा किसान भाई शंकर, तो बाहू जो की मारी बात हुई बा मैं थाने बतावा सा सुनो। किसान भैया जद भी आपने टेम मिला करे है, तो टेम टेम सारू आप अपने गांव गांव तेरे जाया करा और अपना किसान भाइयों बंतर करा करा हाँ। तो आज अपन टेम मिले है और आप चलिए हाँ गांव में देखो अटू नागोर दिखना दी साइड और जन पूगता पूगता पुगिया हाँ रे किसान भाई आपने दिखे है बहु करा बात। राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: काय नाम है और किस गांव है सा?
2: मारो नाम शंकर है सा।
0: शंकर भाई किस गांव है थांगो?
2: डडरिया कला।
0: और डडरिया कला में काय काम दाम करो?
2: खेती बाड़ी कोई करा सा।
0: खेती बाड़ी शंकर भाई जना कता बीघा जमी है?
2: 30 बीघा है।
0: 30 बीघा जमीन में काय काय बायड़ो है?
2: कपास और बाजरो।
0: कपास भाई और बाजरी भाई।
2: हाँ
0: जन कपास हाउंटी है बाजरी हाउंटी है?
2: कपास हाउंटी है।
0: कता बीघा में?
2: कपास है 13-14 बीघा में।
0: 13-14 बीघा में कपास। तो अबार कहीं सिचुएशन है कपास ताजी है कि रोग वोग लागो है हाव निरोगी है कहीं मामला है?
2: ठीको ठीक है कपास।
0: ठीको ठीक है। अब घना रोग होग तो कौन हुआ?
2: रोग तो कौन है बने थोड़ी बरसात वाली कमी है।
0: बरसात कम हुई?
2: कम हुई।
0: अरे थांडा इलाका में तो लारला 5 सालों में बरसात है जो घनी हो रही है।
2: लारला साल में तो घनी हुई, पिछली बार कपास है जो कि आपने खराब हुई बरसात कारण।
0: हल्ली बरसात उनके कारण।
2: हाँ अब गए तो बरसात कम हुई।
0: अब गए बरसात कम है था डायरिया में देखो पहल के मैं ही देखियो बरसात तो कल्ली हुई खेत का खेत ही बरीज का धोरा फूटिया।
2: अब गए बरसात कम है।
0: अब गए जो बरसात देखो थे भी बताओ कमी है लगभग और भी कई किसान भाई की भाई कमी है, यानी अब गए तो हांद्रा खेत एक बजी को नहीं
2: बरी को।
0: तो अब बार काल पियोने की छांटे छुड़ गई हो गई?
2: नहीं दो दे आंगल छांटे छिड़को
0: दो दो आंगले। तो कार करती है कि नुकसान पर है?
2: अब कपास में तो कार करती है, बाकी धाना में देखिए कार कौन करेगा?
0: बाकी धानम जी बाजरी में?
2: बाजरी में तो और भी नुकसान कौन करे आंधी नहीं बाज देना। और बाकी मूंगा में
0: मूंग गुआर
2: में नुकसान ही है
0: क्योंकि बेहतर है जगह लगभग बाडन पर
2: बाडन पर है।
0: सही बात है। तो थे कपास लगभग 15 बीघा में कर में ली हो और अब कपास की अबार ही कपास में था कहीं काम है?
2: अब तो कहीं कौन है पानी दे देवा बस। अब 10-15 दिन में आज ही कपास
0: 10-15 दिन लूड़ने आज ही?
2: हाँ
0: तो लूनन वास्ते पे काई थे लूनो कोई मशीन असीन जाओ?
2: नहीं मशीन कोने लेबर आवे।
0: लेबर आ जाए?
2: हां
0: कटू आवे
2: अब पंजाब हरियाणा काने।
0: पंजाब हरियाणा आज जन बे पस कियान काई लूने
2: बे आपने किला मात्रे 10-12 रुपया जो भी अब के आए जन ठापड़ी
0: 10 रुपया किलो।
2: हां पहले के 10 रुपया किलो ही आटो भी हो साथ चीनी चाय दूध। अब के आए जन माल ठापड़ जी
0: जन 10 रुपये किलो तो पोसा आ जाए
2: ਪੋਸਟ ਗਣੇ ਗੁਆਂਢੇ ਬਣਾ ਬਈ ਗਰਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
3: ਦੇਖ ਪੋਸਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਣਾ ਆਈ ਕਹਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਆ ਜੂ ਪੋਸਟ ਬੇਜ ਲਈ ਬਟ ਆਂਤ ਰੂੰ ਬਤਾਵੇ ਤੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
2: ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਤੋਂ
3: ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਭੇੜਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਜਣਾ ਇਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਲੂ ਲੂਣੀ ਚਾਹੀ ਕੋਨੀ
2: ਲੂਣੀ ਚਾਹੀ
3: ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਤੋ ਬਲੇ ਉਬੀ ਰੋ
2: ਆਪਾਂ ਤੋ ਕਹਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ 10 ਕਿਲਾ ਲੂਣੀ ਜੇ ਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਲੂਣੀ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ
3: ਬੇ ਹੈ ਜੋ ਲੁਣਾਈ ਕਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਔਰ ਬੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਪਾਸ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਜਣਾ ਬਾਂ ਕੇ ਪੜਤਾ ਖਾਵੇ ਹੈ ਤੋ ਬਨ ਅਬ ਜਾਓ ਕਿ ਬੁਲਾਓ ਕਾਈ ਕਰ
2: ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਬੇ ਜਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਣ ਬੇ ਅੱਜ ਹੀ
3: ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਥਾਂ ਕੇ ਕਪਾਸ ਲੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੜੇ
2: ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਜਲਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਜਣਾ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਹੈ
3: ਬੇਚਣ ਕੋ ਕਾਈ ਹਟੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਅੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈ ਹੈ
2: ਬੇਚਣ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
3: ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
2: ਹਾਂ
3: ਸਹੀ ਭਾਵ ਲੈ ਲੈ
2: ਹਾਂ ਭਾਵ ਠੀਕ ਲੈ ਲੈ
3: ਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ
2: ਦੇਖੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਕਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਆਪਣੇ
3: ਕਾਈ ਫੈਂਟ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਵੇ
2: ਫੈਂਟ ਕੇ ਹਿਸਾਬ
3: ਅਬਾਰ ਕਾਈ ਭਾਵ ਹੈ
2: ਅਬਾਰ 10,000 ਹੈ
3: 10,000

0: कुंटल का है।
1: हाँ
0: ठीक है जन, भावड़े आपके कहीं ठीक है दीगे?
1: अब के ठीक है, अब के थोड़ा किसान आ गए जिसे कम हो जिसे भाव ठीक है हार
0: हाँ
1: ला।
0: बात सही है कि मा तो दुकाना बिची हो पैर वो काना बिची रहना चाहिए रहे
1: हाँ
0: ही, क्योंकि भाव 10,000 है तो आप
1: कपास
0: पैदावार किसान
1: पैदावार
0: भाई
1: को नहीं।
0: ज्यादा है को नहीं, कमी है। और लुणई का भी भाव तेने बताया कि भाई लाल साली 10-11 का हार अब गई, दस
1: अब
0: ग्यारह
1: भी
0: का
1: लगभग
0: भाव
1: इतना
0: है।
1: ही है।
0: और लुणई कितनी बार करानी पड़े?
1: लुनाई 2 बार,
0: 2 बार लुणई करानी
1: हाँ
0: पड़े,
1: एक बार
0: पचपन
1: में कहीं पूरा आवे को नहीं, कपार फाटे को नहीं पूरी
0: ला रह जाओ रोने।
1: ला रेज।
0: तो 2 बार में पच पूरा हो जाए
1: हाँ
0: क्या? थोड़ा घना और ला रह जाओ
1: थोड़ घना रेवे जगह, कई लेवेर कई कौन लेवे, कई अगली
0: के
1: फसल की तैयारी खातर लाभ
0: डोडा
1: देवे।
0: रह जाए जगह, डोडा ही और तोड़ना पड़ेगा।
1: हाँ डोडा ही थोड़ा वे,
0: जन कहीं घर का बैठे बैठा
1: घर
0: काम हो
1: बैठ
0: जाए।
1: बैठा वा घर का काम मुझे
0: सही बात है शंकर भाई। और कहीं धीणो दापो राखो भाई?
1: दिनों दाप रखा ने भैंसा को,
0: कती भैंसा है?
1: 3-4 है,
0: 3-4 है के घर में धीणो खाने किता को
1: खाऊनाला 6-7 जना,
0: छे हाजना हो?
1: हाँ
0: जन भैंसे कितनी है?
1: 3-4 है,
0: 3-4 है। दुआ कितनी है?
1: दो दुआ वे।
0: 2 भैंसे था के दुआ बाहर
1: हाँ
0: दिनों तो ठीक ही है जना। हर की दूध दूध बेचो के खाली घर
1: नहीं
0: काम ही लो
1: घरा करूँ,
0: घर करो ही? जन भैंसे ही खर्चो तो कैसा खाया करे?
1: हाँ खर्चो तो खावे अब रहो ना, हाँ उठा जना जना वा
0: सही बात है। और इनको बस काम कौन करे
1: काम है मम्मी।
0: ताकि माँ कर लेवे?
1: हाँ
0: क्या थाई की हार लगो?
1: घर में हारो लगाए जहाँ माए कर लेवे,
0: हाँ तो खेती में हार लगाओ
1: खेती मार लगाए
0: मोटो और
1: जन।
0: मोटो है।
1: हाँ
0: अच्छा अब बाहर जाए अपन कपास अब निवेड़ लें वहाँ पर,
1: हाँ
0: और निवेड़े के बाद में जो ही खेत खाली हुई तो पच कहीं खेत में अब आगे बोने की कहीं तैयारी है?
1: आगे पाचा जीरा और बावा
0: जीरे बोने वास्ते तो बढ़िया तैयार है यार अपन।
1: तैयार काटने पाचा, खेत 20-25 दिन सुखाए देवा तो कहीं आपने जीरा में नमकस कौन माने,
0: अच्छा सूखाना पड़े खेत में,
1: सुखाना पड़े
0: सूखाना क्यों जरूरी है?
1: ने बाद में जीरो जैसे खेत में नमी रहे तो बाद में जीरो कटे। हाँ
0: अच्छा नमी कारण जीरो कटिया करे।
1: जन पहली खेत ने सुखाए दा, एक दो बार हल काट दा जन वो कहीं नमी लिखो रहे खेत में,
0: फंगस कौन बने?
1: फंगस कौन बने।
0: नहीं अपने दोया गणी छाड़नी पड़े,
1: हाँ
0: कह दे भाई वाले जीरो कटन डूगो, कोई के जड़
1: हाँ
0: गलन
1: पचे
0: डूगी।
1: कहीं जीरो कटिया पचे वो पाचो हज गुना हुए पूरा खेत को खेत कट जाए।
0: बिल्कुल सही है। तो देखो पहली तैयारी यानी आते थाने देखो नॉलेज है नहीं हमारा दिन कह दियो मैं तो बार हाँ आला आला में ठीक है तैयार हो रही निकली है आला आला में धान हो रही तो माँ खाती बेलम पाए दे
1: हाँ
0: आए। तो
1: बेला
0: देखो
1: बा
0: नॉलेज की तो बात
1: नॉलेज की
0: हुई
1: बात
0: है।
1: हुई है,
0: जानकारी होनी जरूरी है, और जका ने कोई जानकारी नहीं हुए बानो तो
1: जानकारी
0: भाई।
1: नहीं हुए जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो कृषि विशेषज्ञ हो वो सब जानकारी ले लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल आप बहुत बढ़िया बात करी। और रेडियो सुनने में अपना किसान भाई घणो फायदो है,
1: हाँ
0: क्योंकि रेडियो में टाइम टाइम माते आप है जो यहाँ की बात करा करा, और इन बातों के साथ साथ आप है जो कृषि विशेषज्ञ ने भी बुलाया करा। और अपन देखो बुधवार के दिन तो विशेषज्ञ आ भी है
1: हाँ
0: और किसान भाई आपकी समस्या ले हाजिर है।
1: लगभग किसान ने सुनना भी चाहिए, इनमें बहुत जरूर जरूरी बातें भी आवे हैं।
0: बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है बताइए। और अपना किसान भाई देखो आजकल था के सिंचाई को कहीं साधन है?
1: सिंचाई का साधन ट्यूबवेल है
0: ट्यूबवेल है?
1: ना,
0: तो ट्यूबवेल थांकल थांकल जमी पाओ कोई और ही
1: नहीं माकी माकी पवा।
0: 30 बीघा जमी
1: हाँ
0: था पा लो ठीक है पानी भर तो हज जाओ
1: हाँ
0: थे
1: जी
0: हैं। और पानी कतो गुंडो है?
1: उंडो 400, 450 तानी है।
0: जन उंडो तो पानी खा सके प्रा।
1: हाँ पानी अबे उंडा दिन दिन उंडा ही जावे यार, पानी भारी भी हुए। हाँ
0: भारी उगो पानी है फसल वास्ते ठीक उलो।
1: अब फसल वास्ते नहीं ठीक है तो ये बहुत ठीक है कि खेता नुकसान भी है बने आप आदमी बाकी के धंधो हुआ नहीं, खेती मत डिपेंड है जाने खेती कोई करना पड़े।
0: सही बात है। देखो पानी भारी हुआ तो पानी करें मिट्टी की पानी की करें जांच कराएगी?
1: जांच कौन करे,
0: तो कुल मिला रहे जो हाल पैदावार बढ़िया हुए जो
1: हाल
0: जांच
1: बढ़िया
0: कराके
1: हुआ जनवा, जांच की जरूरत कौन है।
0: जरूरत पड़ी को नहीं। देखो आधुनिक खेती की तरफ भी आपने किसान भाई और भी है जो नई नई खेती की नई नई तकनीक बार अपना रही है, तो
1: हाँ
0: यार बूंद बूंद सिंचाई हूँ जियान था कह रहे हो पानी अब कम पड़ रही है, तो सिंचाई की भी नई तकनीक आपन गणी है।
1: बराबर
0: तो जियान अगर पानी बचाना है तो आपन फुहारा सिंचाई पद्धति है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है यान की आपन
1: यान
0: सिंचाई।
1: के अपना नहीं पड़ी अब।
0: तो थे आस पास में कोई यान की है लगड़ी?
1: हाँ है का सब ला फुहारा सिंचाई करे बूंद बूंद ही करे।
0: बिल्कुल सही है। देखो बूंद बूंद वहाँ पर कई बार के वहाँ भी सरकार भी योजना चलावे कि इसमें सब्सिडी भी मिले,
1: हाँ सब्सिडी मिले ना,
0: और मोटी मोटी बात है कि इसमें 90% है जो पानी की बचत होया करे।
1: हाँ इन
0: तो
1: पानी कम
0: किसान भाई
1: लागे थोड़ो।
0: तो किसान भाई ने अपनों वही कहना है भाई आप पानी बचत वास्ते बूंद बूंद सिंचाई है जो जरूर अपन ने। अपनानी चाहिए। देखो शंकर भाई बहुत ही बढ़िया थे बात मैंने बताई और आप करी यार अपना किसान भाई सुने ला। तो अब लास्ट में आपना किसान भाई ने आप कई संदेश देने चाहो जो कुंभा ने मोटो और मोटो फायदा हो जाए।
1: किसान भाई ना ये संदेश है कि जब पुराना किसान है तो बाने कृषि से विशेषज्ञों जानकारी भी लेनी चाहिए, और नया किसान है बाने मोटा बुजुर्गों बहु जानकारी
0: बुढ़ा
1: लेनी,
0: हाँ जगह खेती का जानकार है।
1: किसान विशेषज्ञ में जानकारी लेनी,
0: बहुत बढ़िया। यानी
1: अच्छी
0: के
1: पैदावार मिल जाए
0: हाँ बिना जाने कोई काम अगर आप
1: बिना
0: करा तो
1: जाने
0: भी मैं
1: काम
0: जो
1: की
0: आप में फोड़ा पड़ सके तो पहले पूछ लेनो,
1: पहले पूछ
0: एक कर
1: लेना।
0: समझ नहीं आवे तो 100 बार पूछो। हाँ बहुत ही बढ़िया बात है बताइयो। यानी ये माप पर है जो नुकसान नहीं
1: नुकसान
0: होता।
1: होना था।
0: हाँ बहुत बढ़िया शंकर भाई थे, इतनी बढ़िया बात है बताइए आप। धन्यवाद। तो किसान भाई देखो शंकर भाई उनसे की आप बात करी, शंकर भाई कितनी बढ़िया बात करी है और आपने बढ़िया सीख भी दी कि भाई आपने बूढ़ा बुजुर्गों और विशेषज्ञों पूछ रहा अगर आप खेती करा तो आपने खेती है जो बढ़िया आप मुनाफा कमा सका। यानी बिग मायने आप है जो पछे थी नहीं खावा खेती हमेशा ही देखो अगे थी बतीरिया करे है। कई किसान भाई है जो को जी अबार खेत खाली हुआ मूंगाड़ा तो मूंगा खेत खाली होते हैं जो ही बाकी खेत में बाइन तो आई हो यानी थोड़ी बहुत लागे कि भाई हाँ तैयार भैया लाग रही है तो भाई अब आ रही गहरी जुताई है बीम कर मेल दी और थोड़ा दिन तय खेत जद पड़िया रहे तो ताजा खेत है जो सू जाए बीम थोड़ी हवा भी है जो चली जाए यानी वह पोली जमीन हो जाए तो पोली जमीन वेड़ी माइन का ये के नाइट्रोजन की मात्रा भी थोड़ी भी में ज़्यादा रही अगर और फसल ने उगने वास्ते सहायक है नाइट्रोजन क्योंकि आप NPK छांटा यहाँ है नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है आप छांटिया करा। तो किसान भाई आप ही बातें तो आज करा ली हो रही है था ही है जो को केवल प्रेम भाई तो आज टिकिया है जो को बातें ही बातें कर रही है। तो देखो थे मनोरंजन वास्ते आप आज बजावा एक बहुत ही बढ़िया प्यारो शो तेजा जी को लोक भजन जो को सुनो और आनंद लेवो सा।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हाँ तो किसान भाई देखो तेजा जी को कितो बढ़िया पलक पलक बिछवाया, तेजा जी पलक पलक पुजवाया, कितो बढ़िया लोक गीत हो रहा आपने जरूर दाया है बोलो। और किसान भाई आप घड़ी खाने जाओ तो देखा तेरे डेढ़ टाइम लगभग पूरा हो रही है, तो इंडिया साथी आप प्रेम भाई ने दिलाओ सीख करा। राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेतीबाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर शाम के 7:30 में है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानो उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहाँ से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल

0: चाहिए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती कोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
2: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
3: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
2: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
1: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।

0: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
1: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
0: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
1: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त विधवा

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक

0: गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
1: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
1: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी।
2: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
2: सोच रही थी? क्या?
3: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
2: बिल्कुल।
3: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
2: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
3: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
2: हाँ।
3: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
3: आपको नहीं लगता?
2: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
2: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
3: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
2: बिल्कुल।
3: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
2: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

0: करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
1: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
0: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
1: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
4: करता है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ
5: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी पहुंच खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना।
5: सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
4: बिल्कुल।
1: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थी, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
0: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
6: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से विशेष प्रोग्राम एशियन गेम्स 2026 की एक झलक।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा।
2: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपक टेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशू जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार हैं। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
2: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
4: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
2: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
5: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अब अच्छा करेंगे।
2: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
6: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
7: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम।

0: बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट. हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन. तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है. वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा. वी शुड विन द एशियन गेम्स.
1: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में. सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
0: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम.
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है. भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी. उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है. भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है.
3: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं. एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है.
2: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
4: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था.
2: और अब बात शूटिंग की. इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है. टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई. केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
5: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था. इस बार पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में. इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए.
2: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था. पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
5: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है. जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है. लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर. वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर.
2: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कोस्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
5: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते.
2: और कहना, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
5: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल. आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री. शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा.

0: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे। इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
1: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
0: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
2: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
3: कितना जोश है?
2: फुल 100 of 100।
3: कितने मेडल आएंगे?
2: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
0: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
2: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
0: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
4: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
3: जो जापान कोरिया का जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
4: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
0: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
5: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
3: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
5: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
3: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
5: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
0: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
6: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
0: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है। अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
7: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पे फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
0: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोद भी मान रही हैं।
8: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
0: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं, हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
9: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do. Like, not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
0: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
10: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में एंड अभी इस साल में, फिर बात करूँ क्यों डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे कैसे आएंगे, यू कैन नॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह।
11: I'd love to change the color of the medal. It'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
0: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
12: अभी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
0: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
13: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
14: कि बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
15: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था, उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेकबॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह

0: गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईची नागोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
1: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए, फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेयरर बनके आईची नागोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
0: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
1: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
0: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
1: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरव घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
0: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इस बारे में भी कुछ बताएं आप।
1: देखिए 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार

0: एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइके कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है, हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनाफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहाँ पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहाँ पे करते थे ताकि वहाँ पहुँच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहाँ आ गए।
1: हेमिका, स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे जापान के आईची नगोया में होने वाले एशियन गेम्स का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से विशेष प्रोग्राम एशियन गेम्स 2026 की एक झलक। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, रात्रि के 8:30 में। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म कॉकटेल से। आवाज़ नीरज श्रीधर और कविता सेठ की है, संगीत प्रीतम कौर, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म क्वीन से। संगीत अमित त्रिवेदी का और गीत लिखा है अन्विता दत्त ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डियर जिंदगी से। आवाज़ जसलीन कौर और रॉयल अमित त्रिवेदी की है, संगीत अमित त्रिवेदी का और गीत लिखा है कौशर मुनीर ने।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पेविलियनों में भाग ले रही हैं।
4: वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
5: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
6: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते

0: हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम में 103.7।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनेंगे रूप कुमार और सोनाली राठौड़ को।
1: मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकी नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

दा जो है सो वो पाया नहीं जाता कहीं, एक आलम जुस्तजू में जी को अपने खो गया। बेकसी मुद्दत तलक बरसा की अपनी गौर पर, जो हमारी खाक पर से होके गुजरा रो गया।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरिबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आपने सुना रूप कुमार और सोनाली राठौड़ को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:25 में हैं। अब हम आपको सुनाते हैं विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25

0: प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जन सेवा के 25 वर्ष ये केवल एक समय अवधि नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया है, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
2: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में CEO बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
3: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

0: बॉयकॉट प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं, तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर, सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का

0: मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
2: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं। उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 कॉलेजी के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हुआ है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
3: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
3: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल,
3: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
3: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी।
3: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशन कितने हैं।
1: बिल्कुल,
3: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशन है, सुरक्षा के डायमेंशन है,

0: के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है. तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं. मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है.
1: बिल्कुल.
0: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया.
1: बिल्कुल.
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया. भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है. लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है. तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है. और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं. तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट.
1: बिल्कुल. जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां, दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई. तो उनका जो सोचने का तरीका है, वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए. तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है.
1: जी.
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है. तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो. और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तो इसमें बदलाव करके दिखाओ. उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ. सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की. ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कंपटीशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया. तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया. और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे. तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया. और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे. तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी.
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट आया, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इम्प्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा. इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं. और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया. और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के

0: प्रोजेक्ट में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
2: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
2: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
2: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी, वो शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
2: तो वो भी एक अलग से ये थी। तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
2: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
2: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में, वो आपने जो पूछा, तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
0: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो हम लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको

0: सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती हैं, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
2: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनामिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए, तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता सुरक्षा इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, मुझे क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है, तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
0: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शर्पा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शर्पा लोग, यूरोप के जो शर्पा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट किया और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की, तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
2: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा, मतलब आप देखिए कि जिसको

0: कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है, वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे, और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे फिर मुलाकात होगी प्रातः 8:49 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।